0: Sridip Naran Bhagwan Ki Jai, Shri Sata Gurudeva Ki Jai.
1: गुरु चरणों में अरसत तीरत है।

सद्गुरु स्वामी माधवानंद भगवान की जय। विश्व गुरु परमहंस श्री स्वामी महेश्वरानंद पुरी जी गुरुदेव की जय। सो दिस इज हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू चेक, चेक टू इंग्लिश ट्रांसलेशन।

जय। श्री देव पुरुष महादेवा की जय। धर्म सम्राट स्वामी मदवानंद जी भगवान की जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेवा की जय। श्याल

Mari. Așa bolia? Good. Tu. Lik do mere rume rume mera me lik lik do muk pe lik do rame sir pe narayan lik do mare rume rume mera लिख दो मारे रूम रूम मेरा कौन में गरु ज्ञान नैना नरसिंगा लिख दो कौन में गरु ज्ञान लिख दो मारे रूम रूम मेरा लिख दो मारे रूम रूम मेरा आता मैं कमला पति लिख दो भुज पे लिख

mamera. Lika do ma pe kanaya lik o pe ro pe balade ve ta pe kanaya lik do pe ro pe balade lik do mare rumbe rum mera lik do mare rumbe rum mera bolo satguru dev ki ha badhiya और बोलो हाँ आना गरुसा मेरे आना आपे गरुसा मेरे आना तुम गणपति रूप में नारिदि साथ लेके सिद्धि सारे आना तुम शिव रूप में आना तुम शिव रूप गरुसा मेरे आना आना गरुसा मेरे या

0: गरुसा मेरे आना आप आना गरुसा मेरी संगतों में आ जाना हरिओम
1: हरिओम।

परमादरणीय परम श्रद्धेय अनंत सरभूषित महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानेश्वर पुरी जी महाराज,

0: संत वृंद एवं प्रिय बंधुओं और स्नेहवती माताओं,
1: He's traveling in America, Australia, and everywhere, so I was hoping he will speak in English. So he greeted all of us who are currently here.
0: Param Pujya, Param Shraddhaya, Ananta Sri Bhushit, Shraddhaya Mahamaleshwar Swami Maheshwarananji Maharaj, jinki pavan kripa se is ashram mein ओम आश्रम जॉर्डन में आप सबका आना हुआ, ऐसे परम श्रद्धे स्वामी जी महाराज जो आज चाहे
1: सो आई विल मेक अ शॉर्ट ट्रांसलेशन बिकॉज ईच ऑफ दिस टाइटल्स ऑफ विच आवर डियर महामंडलेश्वर जी इज टेलिंग फॉर विश्व गुरु जी हैज अ लॉन्ग ट्रांसलेशन सो ही सेज दैट रेवरेंट and respected Vishwa Guruji Paramahansa and who actually enabled all of us to come here in this place
0: aur mujhe aisa lag raha hai ki swami ji ki ye sadhana ye tapasya ek din aisa rang layegi aane wale samay mein vishw bhar ke log yahan darshan karne aayenge
1: and he thinks that these millions of people in the future
0: hamari yahan bharatiya sanskriti mein गुरु का बहुत बड़ा महत्व है
1: इन इंडियन ट्रेडिशन देयर इज अ ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑफ गुरु
0: हमारे भाष्य जगतगुरु शंकराचार्य जी कहते हैं
1: शंकराचार्य जी सेज इन हिज भाष्य इन हिज कमेंटरीज
0: ईश्वर से भी बढ़कर अगर कोई है तो वो गुरु है
1: इफ समबडी इज ग्रेटर देन गॉड देन दिस इज गुरु
0: ईश्वर को हमने किसी ने देखा नहीं है
1: नोबडी सॉ गॉड
0: गुरु जी हमारे सामने प्रत्यक्ष हैं
1: एंड गुरु इज इन फ्रंट ऑफ अस
0: हमारे भाष्यकार कहते हैं कि दुनिया में तीन वस्तुएं बड़ी दुर्लभ हैं
1: आवर कमेंटेटर्स ऑफ स्पिरिचुअल टेक्स्ट से देयर आर थ्री वेरी रेयर थिंग्स इन दिस वर्ल्ड
0: फर्स्ट सबसे पहले दूसरा उस परम तत्व की प्राप्ति
1: रीचिंग द डिवाइन कॉन्शियसनेस
0: और तीसरा महाग्रेट
1: साइंस
0: हम इस बात को मानते हैं कि मनुष्य का जन्म बार बार नहीं मिलता एक तो हमें परमात्मा ने जैसी बुद्धि दी है मनुष्य को वैसी बुद्धि किसी और प्राणी के पास नहीं है
1: intellect which no other living beings have.
0: और दूसरा हमें कर्म करने की स्वतंत्रता मिली है आजादी मिली है
1: एंड वी आर फ्री टू डू व्हाटएवर थिंग्स व्हाटएवर कर्मस वी वांट टू डू सो इंटेलेक्ट एंड कर्मस आर समथिंग स्पेशली मेड फॉर हिम
0: इसी समय का हमें सदुपयोग करना है
1: We got a very limited time and we have to do good in this time.
0: हमारे यहाँ वेद में कहा है यह चेद वेदी असत्यमस्ति ना चेद यह वेदिन महती विनष्टि भूतेषु भूतेषु वचित्त धीरः प्रेत्य अस्माद् लोकाद् अमृतः भवन्ति जिसका भावार्थ ये है कि इस मनुष्य जन्म को पाकर उस परम तत्व तक उस परम सत्य तक पहुँच गए तो हमारा कल्याण हो जाएगा वरना बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा
1: इन वेदास इट सेज दैट इफ यू रीच इफ यू आर बोर्न एज अ ह्यूमन एटमेंट अदरवाइज विल बी अ लॉट्स ऑफ सफरिंग
0: उस परम सत्य तक पहुंचने का मार्ग गुरु ही बता सकते हैं जैसे परम श्रद्धेय स्वामी महेश्वरानंद

तत्तनुं रामानुजं संभजे। ब्रह्म सद्वल्लरी पावनी पीयूषां बुद्धिमंथनोद्भवरसा मुल्लासनी माधवी। श्रीमद्भागवताख्यधाम बसती

0: कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब आप ट्रांसलेशन करेंगे। जैसे एक विद्यार्थी को अपने जीवन में प्राइमरी से लेकर के और एमए तक पढ़ाई करनी होती है, इसी प्रकार की पढ़ाई हमारे अध्यात्म की है, ज्ञान की है।
1: So in the same way, like the teaching starts from the first primary class going all the way to masters and PhD, the similarly the teaching is in adhyatma, in the spirituality.
0: Hamare adhyatma mein, religion mein, dharma mein, primary ki 10 पुस्तकें हैं।
1: In the first class of our in Hindu Dharma and religion and spirituality, there are 10 basic entrance books, primary books.
0: धृति क्षमा दमोस्तेयम शोचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधम दर्शकम ग्रस्त लक्षणम।
1: First is
0: धृति, धृति मानी धारण करना।
1: So to endurance.
0: जैसे अभी सिस्टर गा रही थी
1: patience.
0: कि हमारे साथ विश्व गुरु जी है, हमको कोई समस्या नहीं है, कोई कमी नहीं है, कोई अभाव नहीं है, इसी को कहते हैं धृति, पकड़।
1: So this is like when Vishwa Guruji is with us and we tolerate or we are ready to support or bear everything what is happening around him.
0: Guruji ne jo aapko mantra diya hai, upadesh diya hai aur apna lakshya bataya hai.
1: So whatever the Vishwa Guruji told, Guruji gave you the mantra, the teachings and all what you have to do,
0: us par pakad rakhna,
1: you have to follow,
0: isko dhirti bolte hain.

0: This is called धैर्य.
1: क्षमा.
0: Endurance, patience.
1: कोई छोटा आदमी अगर कोई गलती कर जाता है तो बड़े आदमी को उसको क्षमा करना चाहिए. जैसे कोई क्षमा भी मांग लेता है, कोई क्षमा कर लेता है. आई एम वेरी सॉरी.
0: सो फर्स्ट वन वॉज पेशेंस, द सेकेंड वन इज टू फॉरगिव. सो व्हाटएवर हूएवर डज समथिंग यू आइदर फॉरगिव टू देम और यू फॉरगिव टू अदर्स.
1: प्राइमरी की शिक्षा में जो वाइफ हस्बैंड है, पति पत्नी है, उनको साथ बैठ करके धर्म और भगवान का चिंतन करना चाहिए.
0: सो इन द फर्स्ट क्लास टू द हस्बैंड एंड वाइफ दे शुड थिंक अबाउट गॉड.
1: दृष्टि क्षमा दमस्तेयम् प्राइमरी में है किसी भी वस्तु की, पैसे की नहीं करता है तो वो उसमें पास हो रहा है.
0: The third step is no not steal. Whatever money, things or something you have, they should not steal.
1: पवित्रता.
0: Purity.
1: पवित्रता बहुत जरूरी है. मैं प्लेन में सफर करता हूँ तो केवल वहाँ ईयर लेता हूँ, बाकी कुछ नहीं. क्योंकि वो लाते हैं एक्सक्यूज मी वेज नॉन वेज
0: बी वॉटर बिकॉज और एयर बिकॉज द पीपल आर ऑफरिंग वेज नॉन वेज एंड ऑल दिस इम्प्योर थिंग्स.
1: वो पवित्र नहीं होता, सोच मानी शुद्ध नहीं होता.
0: दे आर नॉट प्योर, दे आर नॉट क्लीन.
1: तो धृति क्षमा दमस्तेयम् शोचम इंद्रिय निग्रह. हमको ऐसा खाना चाहिए, ऐसा व्यवहार करना चाहिए, ऐसा सुनना चाहिए, ऐसा देखना चाहिए जिससे कि हमारा नेचर ऊपर को बढ़े, हम उसमें ऊपर को आवें. ऐसा खान पान आहार व्यवहार हमको
0: थिंक लिसन और व्हाटएवर वी डू शुड बी इन अ सच वे दैट आवर ट्रैजेक्टरी.
1: हमारे बृहदारण्यक उपनिषद में लिखा है आपका आहार शुद्ध होगा. आहार शुद्ध होगा, व्यवहार शुद्ध होगा, आहार शुद्ध हो सत्व श्रुति तो आप विश्व गुरु जी की कही हुई आध्यात्मिक बातों को संभाल सकोगे, पकड़ सकोगे, कैच कर सकोगे.
0: इन बृहदारण्यक उपनिषद इट सेज इफ योर डीड्स एंड इफ योर डीड्स एंड फूड इज क्लीन यू विल अंडरस्टैंड व्हाटएवर विश्व गुरु जी इज ट्राइंग टू टीच यू.
1: धीर विद्या सत्यम क्रोधम दशकम ग्रस्त लक्षणम. धीर विद्या बुद्धि माइंड, इसको बुद्धि को सदुपयोग में लाना चाहिए. धी मनी बुद्धि. और हमारे यहाँ कहते हैं कि जो बुद्धि है, धी मनी बुद्धि है, माइंड ये जो है हो जाती है.
0: सो आवर इंटेलेक्ट एंड माइंड शुड बी फॉर गुड, इट शुड बी प्योर एंड इट दिस हैपेंस फ्रॉम द फूड.
1: विद्या
0: नॉलेज,
1: नॉलेज जिसको नॉलेज कहते हैं वो विद्या. विद्या उसको कहते हैं जो आपको सुलझावे, उलझावे नहीं. सा विद्या या विमुक्त ही.

0: जो आपको उलझावे नहीं सुलझावे उसका नाम है विद्या.
1: Vidya or knowledge is that what frees you, not what binds you, what doesn't cover you or what makes you bound, what makes you free.
0: आप उलझे नहीं हैं इस बात का प्रमाण ये होता है कि आपको मोह नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं, क्रोध नहीं, काम नहीं, ईर्ष्या नहीं, ममता, अट्रैक्शन नहीं है.
1: So you are pure when you are not having all this attachment to this world, mad, moh, rag, dvesh, and so on, all this.
0: हमारे वेदों में सर्वप्रथम दो बात की शिक्षा दी गई है, सत्यम बदो धर्मम चरो. सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो.
1: In Vedas there are two teachings which are taught on the beginning, tell the truth and follow the dharma, follow your duty.
0: ये कोर्स आपका प्राइमरी का 15 मिनट में पूरा हो गया.
1: So your the first class of the spirituality is done in this 15 minutes.
0: एक ही आदमी के लिए, एक ही साधक के लिए, एक ही शिष्य के लिए, एक ही भक्ति के लिए फाउंडेशन में प्राइमरी बहुत जरूरी है. जो उसके घर से साधना शुरू होती है.
1: सो फॉर एनी साधका, एनी भक्ता, एनी डिसाइपल, फॉर एनी ह्यूमन बीइंग, ऑल दीज प्राइमरी थिंग्स आर नेसेसरी एज अ बेस.
0: उसके बाद में उसी साधक के लिए रास्ते अलग अलग नहीं है कि योग अलग है, ज्ञान अलग है, भक्ति अलग है, ऐसा अलग नहीं है. एक ही रोड के अलग अलग नाम.
1: So there is only one road with the different names. Somebody is calling yoga, somebody is calling gyan, somebody is calling this or that. There are no different roads.
0: Bombay Surat Road, primary. Surat, Baroda. Ratlam.
2: He's telling the map of India.
0: India. एक ही रोड के जैसे बम्बई से, और जब सूरत पहुंचते हैं तो वहां से सूरत बड़ौदा रोड हो जाता.
1: सो लाइक व्हेन यू स्टार्ट फ्रॉम बम्बई गोइंग टू सूरत, दिस इज कॉल्ड बम्बई सूरत रोड. व्हेन यू क्रॉस सूरत इज कॉल्ड सूरत बड़ौदा रोड, एंड देन आफ्टरवर्ड्स कंटिन्यू. सो इन द सेम वे ऑल द स्पिरिचुअल पाथ्स आर बेसिकली गोइंग टू द सेम डायरेक्शन.
0: मिडिल का अर्थ होता है योग मार्ग. जिस मार्ग का नाम, जितना का मार्ग का नाम योग है, उसको योग बोलते हैं.
1: द मिडिल स्कूल इज योग.
0: योग में आपके लिए 8 पुस्तक हैं जिनको आपको ध्यान दे करके पढ़ के पास होना है.
1: सो इन द योगा देयर आर 8 बुक्स इन विच यू हैव टू स्टडी एंड देन पास.
0: यम, नियम. यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि आदि पुस्तक. यम, यम का अर्थ होता है अपने को यमयति, नियमयति, दंडयति, स्वान. अपने को नियमित करना, उस पुस्तक का नाम है नियम.
1: The book which tells us how to control ourselves is called Niyam.
0: Niyam. Yam, apne ko rokna.
1: Yam is the book which tells us how to stop ourselves.
0: Aur Niyam ka arth hota hai, jo yoga ke liye kaha hua, yogash chit vritti nirodha, wo Niyam ho gaya.
1: So Niyam is this first line that when your thinking stops, when your...
0: Niyam means kanun ko pass. पालन करना, उसको धारण करना, उसको अपने जीवन में लागू करना.

0: to follow the laws and rules to put it in your life. This is called niyam.
1: यम नियम के बाद में आसन है.
0: After that is yasana.
1: बॉडी को सेट करना, बॉडी में जो पॉइंट है उन पॉइंटों को हाईलाइट करना और उसके साथ साथ में जो है जिसको प्राणायाम बोलते हैं, हमारी बॉडी ईयर से चल रही है, उस ईयर को शुद्ध रखना, इसका नाम है प्राणायाम.
0: So
1: और जो शरीर है उस बॉडी को फिट रखना, ये है आसन.
0: So the third book, Asan, tells us how to keep our body clean and how to make it strong and so on. And the fourth book about pranayama is how to control the air and use it for the purification.
1: Asan se aapki body शुद्ध होती है और इसी प्रकार से प्राणायाम से आपके अंदर पांच ईयर है, वो पांच ईयर शुद्ध होके और ठीक से डिलीवरी सर्विस करती है आपकी बॉडी के लिए, सामान की, मटेरियल की, सामान की.
0: सो लाइक द आसनस प्यूरिफाई द बॉडी, मेक इट क्लीन, द सेम वे द Pranayam does for all these five pranas, five types of air, which then service our body properly.
1: उसके बाद में प्रतिहार आता. प्रतिहार शब्द का अर्थ होता है salt and sweet. समझ गए? प्रतिहार मनी अपने अंदर चिंतन करना और बाहर से कॉन्टेक्ट सब खत्म करना, इसको प्रत्याहार बोलते हैं.
0: सो प्रत्याहार इज टू विथड्रॉ वन सेल्फ फ्रॉम आउटसाइड एंड मेक वन सेल्फ इनसाइड.
1: अभी हमारे अध्यात्म में इंडिया में लोग योगा का बहुत प्रचार करते हैं और दो ही बात बताते हैं, आसन और प्राणायाम. फाउंडेशन में जो यम नियम है वो नहीं बताते, दो ही बात बताते, आसन प्राणायाम. फिजिकली बॉडी के लिए बहुत सरल होता है.
0: सो nowadays इन द वर्ल्ड इट्स वेरी फेमस द योगा, इट्स ओनली मेंशनिंग जस्ट आसनस एंड प्राणायामस, व्हाट इज गुड फॉर द बॉडी, बट यामा इन यामा द रूल्स ऑफ आउटर एंड इनर बिहेवियर दैट नोबडी टेल्स.
1: आसन प्राणायाम के बाद प्रतिहार होना चाहिए, लेकिन आज के योगी जो है व्यापार शुरू कर देते.
0: So after the asana and pranayam pratyahara should come, but people started business before pratyahar.
1: ये मेरा टूथपेस्ट है, ये मेरा ब्रश है, ये मेरी वैसलीन है, ये मेरे स्किन क्रीम माई.
0: So this is my toothpaste, this is my skin cleaner.
1: ये मेरा चमनप्राश है, ये मेरा ग्लूकोज है, ये मेरा वो है. तो प्रतिहार जहाँ शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए था, वहाँ पर व्यापार हो गया, व्यवहार हो गया, विस्तार हो गया.
0: So
1: इसलिए वो योगा के लिए अच्छा नहीं है.
0: So instead of pratyahar, which means coming inside, is vyapar, which means expand, so this is not good for yoga.
2: Guruji, ye baitha na
1: Baba Ramdev ji kahan aa jao, hamara chela hai wo, unko pata hai sabko. To usme ye hai, ab iske baad mein hota hai dharana. Dharana jo swayam ka judgment hai, swayam ki swikriti hai, स्वयं का निर्णय है, स्वयं की कैपेसिटी है और स्वयं की घोषणा है, उसको धारणा बोलते हैं.
0: सो धारणा इज द नेक्स्ट बुक, फिफ्थ बुक, विच सेज अबाउट इट्स आवर ओन कैपेसिटी, आवर ओन कैपेबिलिटी एंड सो ऑन.
1: अभी आप देख लीजिए धारणा किसको बोलते हैं.

0: ये मेरा संगीत वाला है। धारणा किसको बोलते हैं? ये मेरा संगीत ओ भाई
1: सो यू लुक
0: संन्यास लेगा
1: मींस धारणा
0: नहीं नो धारणा
1: धारणा मींस एक्चुअली आल्सो कंसंट्रेशन सो यू लुक एट माय the Dolak person if he wants to have sannyasa so he said no thank you
0: हमको एक व्यक्ति ने कहा आपने अच्छा किया आपने अपनी 21 पीढ़ी पार कर ली आपने बहुत अच्छा किया आप बहुत महान हैं
1: somebody told me you are a great person you cleaned and purified and you cross over 21 of your family lineage all 21 generations crossed over this sansara you are a great person
0: humne apni chadar uske gale mein dali tum bhi apni parampara ko peedhi ko paar karo tum bhi sanyas le lo usne kaha nahi nahi nahi nahi nahi no no no no no
1: so then I said okay I took my shawl and I put around that person's neck and said okay now you become a sanyasi you also take your 21 generations across this world and said no thank you so much
0: to iska matlab hai ki wo dharana mein nahi hai uski dharana achhi nahi hai uska life judgment ya life jo uski prapti hai wo puri nahi hai
1: so desires in this life they are not fulfilled for this person and his concentration towards god dedication is not there
0: dhyan इसके बाद में ध्यान आता है ध्यान में जो है ध्यान से पहले ज्ञान चाहिए
1: बिफोर मेडिटेशन यू नीड सम नॉलेज
0: एक जो है वो ध्यान बिजनेस बन गया है
1: एंड दिस नॉलेज बिकेम नाउ बिजनेस
0: आप वहां गए थोड़ी देर आपको घंटा दो घंटा बैठाया और बड़ी बड़ी बातें की तो वो एक बिजनेस है लेकिन ध्यान से पहले ज्ञान चाहिए
1: सो लाइक दिस नाउ दिस मेडिटेशन क्लासेस एंड सो ऑन दे आर देयर जस्ट टू मेक इट्स लाइक अ टाइप ऑफ बिजनेस बट बिफोर यू एक्चुअली स्टार्ट विद मेडिटेशन यू हैव टू हैव सम नॉलेज
0: अच्छा ये बताइए मैंने आपको देना है मनी तो मनी 10 रुपए लोगे कि 50 लोगे कि 100 लोगे कि 500 लोग 500 का नोट लोगे कौन सा लोगे जब मैं कहूंगा कि मेरे से मनी ले लो मनी रखा है तो कौन सा नोट लोगे
1: सो इफ आई टेल यू प्लीज टेक द मनी फ्रॉम मी एंड देन आई गिव यू 5 10 20 50 100 और 500 रुपीस व्हिच वन यू विल टेक
0: अब मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि इतने में से कौन सा नोट लेंगे आप
1: फ्रॉम ऑल ऑफ
0: 500 का ना 500 का
1: फ्रॉम ऑल ऑफ दिस यू विल टेक
0: 500 का ठीक है ना
2: 2000 का
0: बंद कर दिया मोदी ने यार 2000 दे दे 200 का नहीं कैसी बात कर रहा है अगर हम आपको दे रहे हैं तो 500 का लेगा ना आदमी नहीं लेगा क्या
1: So if I give you 500 rupees, you will take 500 rupees. You will take less.
0: सभी अभी शर्मा रहे हैं, लेकिन जब मौका मिलेगा तो.
1: Now we are like
0: again hand, yes.
1: Now we are a little bit ashamed, but when the opportunity comes, we will definitely take 500 rupees.
0: ध्यान उसी का होता है, जिसकी कीमत आपके दृष्टि में ज्यादा होती.
1: So you can do dhyan which when you value something really much.
0: Yam labdhva cha param labham manyate nadhikam tatha yasmin stobi dukhena guruna na vichalayit. To jiski aapki drishti mein mahima hoti hai, kimat hoti hai, mahatv hota hai, usi ko aadmi yaad karta hai.
1: So whatever is valuable in your eyes, whatever you think is good, whatever you think is best, that actually you concentrate on.
0: आपका आपके जीवन में आपके बीवी बच्चे परिवार का महत्व है अगर आप दो घंटा ध्यान केंद्र में रहोगे भी और वो आपको

0: कुछ बताएगा भी, तो थोड़ी देर में वहाँ से बाहर आने के बाद आपका ध्यान अपने बीवी बच्चों की तरफ जाएगा, क्योंकि उनका महत्व तो आपकी लाइफ में ज़्यादा है।
1: Like if you have children, wife or husband, and then you go for meditation, even in this, after the meditation, you will continue thinking, or during the meditation, you will continue thinking on them, because they are something valuable in your life. You.
0: होता, संसार होता, लेकिन मनुष्य का ज्यादा ध्यान गोल्ड पे होता है।
1: There is a family.
0: क्योंकि गोल्ड कीमती होता है, महत्व का होता है, उपयोगी होता है।
1: The for any human, the life, the family, and the samsara, this world is valuable, but the gold is most valuable.
0: ये समाधि, हमारे किसी सृष्टि के सिस्टर का नाम भी समाधि था,
2: दिल्ली में
0: हाँ, दिल्ली में समाधि सिस्टर है। समाधि का अर्थ होता है कि ना आप संसार में हैं, ना आप शरीर में आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट है, अट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्ट, इसलिए आपका अपने पर ध्यान है, उसको समाधि बोलते हैं।
1: समाधि इज व्हेन यू फील ओनली योरसेल्फ, देयर इज नो कनेक्शन विद योर बॉडी, देयर इज नो कनेक्शन विद दिस वर्ल्ड, यू हैव कनेक्शन ओनली विद योरसेल्फ।
0: हमारे विश्व गुरु जी के ध्यान में, ध्यान शिक्षण में दो प्रकार की समाधि होती है, एक सविकल्प, एक निर्विकल्प।
1: There are two types of samadhis, sarvikalp and nirvikalp.
0: सविकल्प समाधि उसको कहते हैं जहां पर साधक पक्का है और उसको ऊपर उठाने का साधन भी सच्चा है, और जहां की उसका गॉड जो उसको पाना है वो भी उसकी समझ में है, इसको बोलते हैं सविकल्प समाधि।
1: सो द सविकल्प समाधि इज व्हेन देयर इज अ गॉड हु ही अंडरस्टैंड्स एंड देयर इज हिज डिजायर्स व्हाट ही वांट्स, सो विद सम डिजायर और विद सम एम।
0: इसके जहां पर न तो शिष्य रहता है न गुरु रहता है, ये दोनों गॉड में मिलकर के गॉड हो जाते हैं, अहम ब्रह्मास्मि।
1: सो इन निर्विकल्पा देयर इज नाइदर डिसाइपल देयर इज नो गुरु, दे बोथ मर्ज इनटू द गॉड, अहम ब्रह्मास्मि, आई एम ब्रह्मा।
0: ये हो गई अब 12वीं क्लास की, 16वीं क्लास तक भाग तो नहीं जाओगे।
1: सो दिस इज 12th क्लास।
0: अब 12वीं क्लास क्या है? भक्ति, जिसको हम भक्ति कहते हैं।
1: सो 12th क्लास इज भक्ति।
0: भक्ति में, भक्ति के कोर्स में 9 पुस्तकें हैं, 9।
1: इन द कोर्स ऑफ भक्ति देयर आर 9 बुक्स,
0: 9 पुस्तकें। बात सुनना तो केवल विश्व गुरु जी की सुनना, बाकी को सबको इग्नोर कर लेना, नहीं हमने सुनना चाहते।
1: सो फर्स्ट
0: श्रवण भक्ति,
1: सो फर्स्ट इज लिसनिंग, सो लिसन ओनली व्हाट विश्व गुरु जी सेज, नथिंग एल्स।
0: अंदर से याद करो तो ओनली विश्व गुरु जी को याद करो, दूसरे को याद नहीं करो, ये कीर्तन है।
1: कीर्तन और रिमेम्बरिंग इज दैट यू रिमेम्बर ओनली द वर्ड्स ऑफ विश्व गुरु जी, नथिंग एल्स।
0: याद करो तो एकमात्र गुरु और गोविंद को याद करो, दूसरे को नहीं, ये स्मरण भक्ति है।
1: Remembering the smaran bhakti is when you remember only God and Guru, nothing else. There is nothing except God and Guru.
0: Surrender. चरणों में झुक जाना, चरणों में समर्पित हो जाना, चरणों में आश्रय पाना, ये पाद सेवा भक्ति है।
1: So these are the different ways how to surrender yourself to the lotus feet of Master.
0: पूजा पूज्य समझो तो गुरु गोविंद को, पूजा करो तो गुरु गोविंद की, दूसरे की किसी की पूजा

0: नहीं करनी चाहिए, उससे मनुष्य को भटकने की संभावना होती है।
1: So if you do some puja, if you do some ceremony, do the ceremony for God and Guru. If you follow somebody, follow Guru and God, because otherwise you can get lost.
0: अपनी आवश्यकता और गुरु गोविंद का महत्व समझ करके जब वंदना की जाती है, स्तुति है, वंदना है, वंदन है, उसको वंदना भक्ति बोलते हैं।
1: When we start glorifying the importance of Guru and God, then this is called vandana. This next
0: दास्य, सेवक, शिष्य, उसको दास्य भक्ति कहा गया है।
1: Next one is serving, to serve the Guru and God.
0: दास, अपना अस्तित्व, अपना महत्व, अपना अहम आकार प्रकार स्वरूप मिटा करके गुरु में समाहित हो जाना उनकी सेवा में, उसको दास बोलते हैं।
1: दास और सर्वेंट इज व्हेन यू रिनाउंस ऑल ऑफ योर आई और ऑफ योर इगोइज्म एंड देन यू डेडिकेट योर लाइफ टू द सर्विस ऑफ द गुरु।
0: जब आपका मन शुद्ध हो जाता है और गुरु गोविंद को विश्वास हो जाता है, तो उस समय पर गॉड, भगवान, गुरु आपको अपना मानते हैं और आपके साथ मित्रता का व्यवहार करते हैं, उसको सखा भक्ति बोलते हैं।
1: Sakha Bhakti is the next step, is when you believe and trust your guru so much that he also can become like your friend.
0: Hamare Sanatan Dharma Vedic Marg Bhakti Marg mein dheere dheere dheere dheere Arjun jab Krishna ke nazdeek gaye, Sevak Nehre ne diya, unko sakha bana diya, sakha, mitra,
1: so like
0: friend.
1: When Arjun was with Krishna, he didn't, after some time, he stopped being his servant, he stopped being his sevak, he became his friend.
0: Iske baad mein atma nivedan bhakti aati hai. Bolo, Maharaj ji, ab main aapke saath hi kal subhere chala chalunga. चलो इसकी तरफ से मैंने बोल दिया। कहते आत्मनिवेदन।
1: आत्मनिवेदन इज व्हेन यू से आई एम गोइंग विद यू टुमारो मॉर्निंग, आई विल गो विद यू व्हेरेवर यू वांट।
0: वो आत्मनिवेदन है। आत्मनि हमारा ये निवेदन है कि हम आपके यहाँ एडमिशन चाहते हैं, एंट्री चाहते हैं, और अब हम उसी कंडीशन में रहना चाहते हैं जिस कंडीशन में हमारे गोविंद रहते हैं, गॉड रहते हैं।
1: सो इट्स रिक्वेस्ट ऑफ द सोल दैट आई वांट टू लिव इन दैट कंडीशन, आई वांट टू लिव इन सच अ वे लाइक अ गॉड इज लिविंग।
0: इसके बाद में परीक्षा होती है एक ही आदमी के लिए, वो क्या है, ज्ञान की भूमिका।
1: सो द एमए, द मास्टर डिग्री इज द the index of knowledge is the last.
0: सात पुस्तकें हैं, उसमें सात पुस्तकें विद्यमान की गई,
1: seven books
0: उसमें है। पहली बुक्स क्या है, सुभिच्छा। क्या है भैया सुभिच्छा? सुभिच्छा क्या है, बोलो गुरु जी, अब मैं आपके पास ही रहूंगा, रह लेना हम काम आना।
1: फर्स्ट बुक इज स्वइच्छा और द ओन डिजायर, एंड यू से गुरुदेव आई वांट टू लिव विद यू।
0: अच्छा अब आपको तो हम एक मीडिया बना रहे हैं। अच्छा

0: अब बोलो गुरु जी, गुरु बोलो जी। मेरे विचार आपके विचारों से मिल रहे, ले ले संन्यास।
1: Your thoughts and guru's thoughts are equal. You're thinking like your guru.
0: तन मानसा, इसके बाद में जो है पुस्तक है तन मानसा। गुरु से जब विचार मिलता है तो जैसे बड़ी टंकी में से पाइप में से पानी आकर घर की छोटी टंकी में आने लगता है, ऐसे ही गुरु का ज्ञान शिष्य में आने लगता है। इसलिए उसको तन मानसा बोलते हैं, यानी कनेक्शन, बड़ी टंकी से छोटी टंकी में कनेक्शन।
1: सो द नेक्स्ट वन इज तन मानसा, व्हेन द गुरु, द नॉलेज ऑफ द गुरु स्लोली स्टार्ट्स टू बी ट्रांसफर्ड टू द स्मॉल पोर्शन ऑफ शिष्य ऑफ डिसिपल।
0: सत्वापत्ति, अब चतुर्थी जो है ज्ञान भूमि सुविच्छा स्यात्, प्रथमा समुदायता विचारणा, द्वितीय स्यात् तृतीय तनुमानुसा, सत्वापत्ति चतुर्थी स्यात्, पंचमा संसात्मका पदार्थ भावनी षष्ठी, सप्तमी त्रियगास्मृतम। तो चौथी जो भूमिका है, चौथी पुस्तक है, उसके कारण गुरु में और शिष्य में जो है एकता, एक आकार, एक अभिव्यक्ति और एक विचारधारा बन जाती, उसको सत्वापत्ति बोलते।
1: सत्वापत्ति इज द नेक्स्ट स्टेप व्हेन इन गुरु एंड डिसाइपल देयर इज नो डिफरेंस इन देयर थिंकिंग एंड एवरीथिंग।
0: पदार्थाभावनी कहते हैं, पदार्थाभावनी, जैसे आपको चाय याद ही नहीं आवे, कॉफी याद ही नहीं आवे, चटनी याद ही नहीं आवे, रसगुल्ला याद ही नहीं आवे, आइसक्रीम, फिर 15-15 इंजेक्शन। पदार्थाभावनी का अर्थ ये है कि आपके सामने स्टोन हो और आपके पास में जो है गोल्ड हो, इस दोनों को आप बराबर समझे, इसको पदार्थाभावनी बोलते हैं।
1: पदार्थ अभाव, the detachment from the anything is like you can have a stone or you can have a goal for you, this is equal.
0: नहीं, पहले असंशक्ति। असंशक्ति ये है, असंशक्ति इसको कहते हैं कि कभी कोई रिलेशन में आपके मदर हैं, फादर हैं, ब्रदर हैं, वाइफ हैं, चिल्ड्रेन हैं, कोई भी है, इनमें आप गुरु को छोड़कर इनमें आपके मन का नहीं जाना, उसको बोलते हैं असंशक्ति।
1: असंशक्ति इज व्हेन यू डोंट थिंक एंड देन यू गो बैक टू योर फैमिली, टू योर ब्रदर्स, सिस्टर्स, वाइफ, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन।
0: अब तो हमारा एक ही नारा, ना हम किसी के
1: बदिश।
0: पदार्थाभावनी, जहां सोना मिट्टी बराबर लगे, कोई भी उपलब्धि, कोई भी प्राप्ति, संसार संबंधी जो अपने को प्रभावित नहीं करती हो, उसको शास्त्र ने असंशक्ति कहा।
1: सो ओनली आफ्टर यू गेट डिटैच्ड फॉर योर फैमिली एंड सो ऑन, यू कैन कम टू दिस डिटैचमेंट फ्रॉम द थिंग्स फ्रॉम दिस वर्ल्ड लाइक गोल्ड एंड ऑल दिस।
0: हमारे भागवत में श्रृंगी ने साफ दिया था, परीक्षित को तक्षक काटेगा, और लास्ट में तक्षक आया फणा उठा करके, लेकिन परीक्षित डरा नहीं। आप डरोगे जब कोई आएगा, ईयर, वो क्या नाम बोलते उसको,
1: सांप, सांप, स्नेक,
0: स्नेक, वो आएगा तो आप बैठे रहोगे कि भाग जाओगे?
1: So like in the Bhagavata there is this curse of king.
0: इसको पदार्थाभावनी बोलते हैं कि किसी से भी हमको खतरा महसूस न हो, डरने लगे। और कृष्ण भगवान ने कहा, नैनम छिंदंति शस्त्राणी, नैनम दहति पावक, नचैनम क्लेदंति आपो, न शोषेति मार्ग।

0: आपको शस्त्र नहीं काट सकता, पवन नहीं उड़ा सकता, पानी आपको जो है वो भिगा नहीं सकता है, हवा आपको उड़ा नहीं सकती है। ऐसा आपका स्वरूप है, उसमें स्थिति होने का, स्थित होने का नाम है पदार्थाभावनी। उन पदार्थों का आप पर कोई प्रभाव नहीं, उसको पदार्थाभावनी बोलते हैं।
1: So this is that book Padarthabhav, the there is no fear of snakes, there is no fear of death, there is no fear that the fire will burn you, you will drown in the water, that anything will happen with any element. So this is the
0: जब आपके चारों तरफ सभी संसार में वो पड़ा हुआ हो और आप कृति या कोई वर्क आप उसमें नहीं करते हो तो उसको तुरिया अवस्था बोलते हैं।
1: And then afterwards is Turiya Avastha, the place or the mind state when you have anything around you and then you don't want to do any work in that, it doesn't attract you at all.
0: इस प्रकार से जिसने स्टार्ट किया गुरुजी से, इस प्रकार से उस व्यक्ति को सारी क्लासें और सारी पुस्तकें तैयार करके लाइफ में पास होना चाहिए और गुरु गोविंद को प्रसन्न करना चाहिए, गुरु गोविंद को विश्वास में लाना चाहिए और गुरु गोविंद को ये एहसास कराना चाहिए कि आपने जो हमारे साथ मेहनत की, वर्क की, वो हमने सफल कर दिया।
1: सो इन आवर लाइव्स फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट वी हैव टू पास ऑल दिस टेस्ट एंड वी हैव टू कन्विंस द गुरु एंड द गॉड that we did, and then whatever you invented in us, whatever you effort you put in us, it was successful. So we passed all these exams. This Acharyaji is telling to us that we should success, we passed, and we should successfully pass all Vishwaguruji's tests or effort what he gave. We should fulfill all his wishes.
0: पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।
1: श्री दीप नारायण भगवान की जय। देवदी देव देवेश्वर महादेव की जय। इंदुदानंद सम्राट महाराज नंजी भगवान की जय। राजगुरु महामंडलेश्वर आचार्य महामंडलेश्वर शोकनंद भारती जी महाराज की जय।

0: सर्वेषां शान्तिर् भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु।
1: ओम, हाथ जोड़िए,
2: जॉइन द हैंड्स।
1: ओम अंतश्चरसि भूतेषु गुहायां विश्वतोमुखत्वं यज्ञस्थं षट्कार आवो ज्योतिरसमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्सर्वम्। ओम सुमित्रानावोकदय सन्तु दुर्मित्रियास्तस्मै सन्तु युष्मान् द्विष्टि यं च वयं द्विष्मः। ओं कयानचित्रा आभुवदूति सदा वृधः सखा कया सचिष्टया वृधा शन्नौ देवीरभिष्टय आपोभवन्तु भीतै शंयोरभिस्रवन्तु नो अमि काञ्चिदं प्रतिलोभयन्ति ग्रहाणाङ्गन्यपविपरेऽभिप्रेहिर्निर्दतशोकैरन्दे नामित्रास्तमसा सन्दाम्मा अवसृष्टा वरपद शर्वी भ्रमस घोंषिते गचां मित्रान् प्रपद्यस मामिकाञ्चनौ छिस् हौं फट् स्वाहा। ॐ देवस्य द्वासविदौ भ्रसवै यस्मिने बाहुभ्यां पश्नोरुताभ्यां ब्रह्मण मुखेभ्यः गुरुवचनेभ्यो मम ब्रह्मणा। ॐ कवचसन्धारणे जपे होमे विनियोगः। ते देवा शान्तिदा पुष्टिदा वरदाभीष्टदा सङ्कल्पसिद्धिदा भवन्तु। एकवारं परिक्रमा करा दी जल्दी।
2: नाउ विद द हैंड्स यू विल मेक द परिक्रमा ऑफ दिस वाटर ऑफ द यज्ञकुंड।
3: राइट हैंड
2: विद द राइट हैंड
1: देन अग्नि देवा विल बी इन फ्रंट अस नाउ दिस थ्रू दिस प्रोसेस। हाथ नहीं बढ़ जाते हैं। तो कपूर को नहीं, कपूर वाले का नहीं लगेगा,
2: कपूर ही जाएगा, विदेशी कपूर।
1: ते देवा शांतिदा पुष्टिदा वरदाभीष्टदा संकल्प सिद्धिदा भवन्तु। बोलिए दीप नारायण भगवान
4: की जय।
1: बोलिए सद्गुरुदेव महेश्वरन जी
4: की जय।
1: देवेश्वर महादेव
4: की जय।
1: द्वादश ज्योतिर्लिंगेश्वर महादेव
4: की जय।
1: आज के
4: आनंद की जय।
1: इन विच डायरेक्शन सन राइज, वेयर इज
3: ईस्ट,
1: ईस्ट वेयर इज ईस्ट,
3: हियर
1: आर यू लुकिंग, देन यू कैन सी द सन एंड चांट योर गुरु मंत्र,
5: यस
1: नो, देन इन द क्लोज आईज देन यू कैन सी दिस साइड। When Avatar Puri will come, first Parikrama, you can make Parikrama, three Parikrama, then close eyes,
5: yes.
1: You will sit there. When Avatar Puri will come,
5: yes.
1: Then he will give you name and mantra. And
2: Kardashika.
1: No? You chant mantra and your asana should be there. Mm-hmm. Then Avatar Puri will come, then he will suggest you.
2: परिक्रमा
1: ओम सप्ताह।

0: Peace, peace, peace. Hari Om. Good evening, dear sisters, brothers. Welcome for this evening. Our subject is Kundalini and chakras. What gives us the chakras?
1: येन बद्धो वली राजा दानवेन्द्रो महाबल तेन त्वाम् अनुवदनामि रक्षेमाचलमाचल अद गुरुवंदनं करिष्ये
2: Diksha, you will sit first down. We will request for Diksha that very auspicious.
3: Basmani, Basmadharanam. गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे मन्नाथो श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः नमो एक दंडवत प्रणाम टू एंड दीक्षा दिस वेरी ऑस्पिशियस
4: विक्रम हटी आवे खेत बारे कहीं करो बारे कहीं करो नहीं ना
5: ओके
0: ॐ शिवो नामासि सदिते पिता नमस्तु ते अस्तु न ॐ शिवो नामासि अतिथिं जनानाम् आसन्न भद्रा जनयन्त देवाचोहम्म चोहम्म

0: इनको प्रणाम करवाना साष्टांग। सम्राज मदिदिं जनानाम आसन्न पात्रा जनयन्त देवा
1: विद्यानन्दपुरीं सन्यासी रूपेण संस्थाप्य
0: स्वामी दे
2: दिव्यानन्दपुरी
3: Yogendra, you shaved because you want to come in the line or what? You just got a kid. No, the Divyana.
0: हमें पांच ही कुंडा मारे पांच ही ना जितना यार कुन्न पूजा कराए तो एक बार जितना हैंग आवे आप पधारो बैठो संकल्प करा रहे अवतार पूरी जी संकल्प करा रहे बैठो हाँ जब पहले दवा हाथ में जड़ पहले हाँ बाहर तो रहूँगा बात थोड़ा जी नहीं अब जिमना पहले जिमना हाथ में जल दो तरफ जी नहीं दो नर्सिंग नहीं दो ओम माँ पवित्र पवित्र वेत्य सेवाम देवी से अनुष्टुप चंदा विष्णु देवता रधि पवित्र करने मंत्र जब विनियोग पृथ्वी द्वारा ओम माँ पवित्र पवित्र वा सर्वावस्थाम गत विवाह यस मरे कुंडली का क्षम सा भाई अभ्यंतर सुचि पृथ्वी द्वारा तथा आत्मतत्व शोधया मे ओम पृथ्वी द्वारा तथा लोका देवी तम विष्णु तथा त्वंच धारय माम देवी पवित्र कुरु चासनाम ओम पृथ्व्यै नमो नमः पृथ्वीदेव्यै नमो नमस्करोमि पृथ्व्यै नमो नमः जगत्मात्रै नमो नमः जगदम्बायै नमो नमः त्रिवारं भूमिं ताडयन् नसिंग जी निको हम बम बाटक जटिल भैरवनाथाय नमः बम बम जटिल भैरवनाथाय नमः जटिल भैरवनाथाय नमः जटिल भैरवनाथाय नमो नमः भैरवाय नमो नमः हम भैरव अनुज्ञा मे दे शरणागत वसला भक्त्या समर्पित मे दत्त चरणारविंद पूजनम हाँ जोड़िए अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम सर्वेषाम अविरोधेन पूजा कर्म समारभे अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विघ्नकर्ता रस्ते नश्यन्तु शिवाग अपक यदत्र संस्थितं भूतं स्थानमाश्रितं सर्वतक्त्वा तु तत्स्थानं यत्र स्थितं तत्र गच्छन्तु भूतप्रेत पिशाचाद्य ॐ निवारणं हं हं बटुक भैरवनाथ भैरव स्मरणं ध्यानम भैरव जी का ध्यान नहीं हम करकलित कपाल कुंडली दंड पाणी तरुण तिमिर नील व्यालय ज्योपवीति क्रतु समय सपर्यां विघ्न विच्छेद हेतु जयतु बटुकनाथ सिद्धिदा साधकानां अनेन ध्यानेन बटुक भैरवनाथ सिद्धिदा

0: प्रतिष्ठया प्रतिष्ठया वरुण देवा सुप्रतिष्ठित वरदो अभिष्ट संकल्प सिद्धिद मे भवतु ओं भूर्भुवस्वः ओं वरुणाय चंदनम समर्पयामि ओम इत्यादि पंचोपचारै संपूज्य अनामिकया कलशं स्पृष्ट्वा ये मुद्रा आनी चाहिए, ये मुद्रा से इनका कलश का स्थापना हो, इन्हें टच करा दो। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता मूले तदस्थित ब्रह्मा मध्ये मातृगणास्पदा कुक्षौ सागर सप्त सर्वदी सर्वे दीपा वसुंधरा ऋग्वेदो अथ यजुर्वेद साम वेदो अथर्वण अंगे सहित सर्वे कलशाम्बु समाश्रिता गायत्री चात्र सावित्री शांति पुष्टिकरी तथा आयांतु देव पूजार्थम दूरी तत्गा गंगे च यमुनि चैव गोदावरी सर्वसदे नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु ब्रह्मांडोदर तीर्थानि करिष्पष्टानि तैरवे तेन सत्येन मे देवं तीर्थं देहि दिवाकर। उन्हें जयदेव आकाश सूर्य के अंगुल करके इस पर ओम पुत्र इसको कोई भी ले लीजिए अंगुल इनमें कलश में डुबो। ओम ऋग्वेदं पूर्वे ऋग्वेदाय नमः चार दिशा में
1: यजुर्वेदाय
0: नमः पूर्वे ऋग्वेदाय नमः दक्षिणे यजुर्वेदाय नमः पश्चिमे सामवेदाय नमः उत्तरे अथर्वण वेदाय नमः कलशां मदये अपां पदये नमः। कलश के बीच में पूजन करो, हम कलश को हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं। देव दानव संव्यादे मत्यमाने महोदये उत्पन्नोऽसि तदा कुम्भ विधृता विष्णुना स्वयं तत्तो ये सर्वतीर्थानि देवा सर्वे त्वयि स्थिता त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणा प्रतिष्ठिताः शिव स्वयं तवमेवासीत् विष्णुस्तं च प्रजापति आदित्य वसव रुद्रा विश्वदेवा सपेत्रिकाः त्वयि तिष्ठन्ति सर्वेऽपि यत् कामफलप्रदा आदित्य वसव रुद्रा इन्द्रेण सह प्रजापति त्वयि तिष्ठन्ति सर्वेऽपि कामफलप्रदा त्वत्प्रसादात् इमां पूजां कर्तुम् इहे जलोद्भवः सान्निध्यं कुरु मे देव सर्वदा भव सन्निधौ भव सर्वदा अंकुशमुद्रया सूर्य मंडला तीर्थान्यावायामी। यहाँ की सभी अच्छी नदियाँ जो है, सावा नदी है, करका नदी है, ऑल नदी ऑल रिवर कम हियर। हम कवचे नमकंठ मत्स्य मुद्रे आचाद्य मूल्य नवष्ट भेद गृत्वा पूजा द्रव्याणि संप्रोक्षिता पूजा महा। एक बार यहाँ समर इन पाँच छाँटो दे दो, वो अपने जयदेव जयदेव अपन डाबड़ो पड़े नी डाबड़ो सीता ओम मा पवित्र पवित्र सभी समर हो। ओम मा पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतिविवाह्य स्मृत पुंडरीकाक्षां चाबह्याभ्यन्तर शुचे। ओम आपोष्टामयो वस्थानौर्जैर्दधातनः महेरणाय चक्षसे योऽस्

0: जयदेव अपना वती कटोरी नहीं कहाँ पर है बत्ती है क्या
1: बत्ती
0: यस गिव मी कॉटन
2: You all can go and greet him and offer dakshina and congratulate them both when they sit. Let them come and then you can congratulate them.
3: प्रथम मेखला पूजन द्वितीय मेखला पूजन तृतीय मेखला पूजन यज्ञ आरंभ कला
0: तो यार जब आप चार्जर बैठा नहीं
3: सब सबको बैठा देता है ना
0: नहीं यूट्यूबर बैठा है
3: थोड़ी देर बात करें
0: इनका क्या
3: नारंगी जाएंगे जब
0: नहीं स्टार्ट करो अफ्तार को
2: क्या हुआ है नहीं ना
0: नहीं यहाँ सब अकेले ही है सब यहाँ तो अकेले ही है
2: बच्चा सो रहा है तो ये लेकिन
0: एक बार दीप प्रज्वलन जयदेव इसमें घी डालो दीप प्रज्वलन करो ओम स्योनास्मे भव पृथव्या भवान निक्षरा निवेशनी यच्छाना सर्म सप्रदाम पृथ्वी देव्यै नमो नमः भवान्ये नमो नमः घी लगे मन ओम वो अपना लाइटर है आपके पास लाइटर ले जाओ
2: नहीं
0: लाइटर पड़ा था ना काम उसी में उधर
2: योगेंद्र
0: यस
2: लाइटर मैचेस
0: लाइटर लाइटर है यहाँ पर कहीं
2: ओके वी फाउंड इट योगेंद्र

ओम अंगुष्ठाभ्याम नमः ओम नम तर्जनेभ्याम स्वाहा ओम मम मध्यमाभ्याम वौषट ओम श्रीमानामिकाभ्याम वखट ओम वाम कनिष्ठिकाभ्याम नमः ओम यम कर्तकलकृष्पष्टाभ्याम ओम फट स्वाहा ओम गणनाथ सरस्वतीं रविशुक्रं बृहस्पतिं पंचेतांसं

शुद्धोदक स्नानम समर्पयाम। एक बार शुद्धोदक वापस स्नान करा दीजिए, वस्त्रम वो मोड़ चढ़ाओ। हम तस्माद् यज्ञा सर्वहुदा सर्वहुदा ऋचा सामानि जगिरे छन्दागुंस जगिरे यज्ञोपवीतं समर्पयाम।

0: Borrow from him. Hey, here, look, give 10 euros. Take 10 euros. Later we'll give you back. Oh, merci, Ashish.
1: ओम विष्णु विष्णु विष्णु विष्णु दिद्राज्ञं या प्रवर्तमान सद्य ब्रह्मणो
2: द्वितीय पराजेश शेदो अराह कल्पय वैवस्वते मनवंतरे अष्टावेशति तमय कलि युगे कलि पदम चरणे शंभो देवे भरतखंडे केतु मालक्षेत्रे
1: केतु मालखंडे
2: हे
1: स्लोवेनिया देशे
2: नद्यां क्षेत्रे हे
1: स्लोवेनिया
0: देशे स्लोवेनिया देशे
2: स्लोवेनिया नाम के देशे हे
1: पूर्ण पवित्र मासे ज्येष्ठ मासे अष्टम्यायाम
0: ब्रूमाट गोत्रे
2: शुक्ल पक्षे हे अष्टम्याम तिथौ हो
1: अद्य
2: वाराधिपते हे अद्य
1: कश्यप गोत्र उत्पन्न
2: नाउ योर गोत्र
1: माता जी का नाम और इनके ग्रैंड माता जी का नाम है ना, आप समझ ही रहे हैं पूरा परंपरा का
0: स्वामी अवतार पुरी ओम सही योर नेम योर ओन नेम
1: योर नेम
2: ओन नेम मामो का दर्द क्षेत्र दम ब्रह्म वर्चस्व कामार्दम सत्य स्मृति
0: योर नेम
2: पुण्य पलम चपाकर दम्मा श्री गणेश भोजनम्मा श्री सर्वतो भद्र मंडल भोजनम्मा नवग्रह मंडल भोजनम्मा षोडश मात्रिका भोजनम्मा
1: भूमि पूजन
2: यज्ञ वेदी भोजनम्मा भूमि पूजन कर्मम च यज्ञ वेदी पूजन कर्मम च यज्ञ योनि पूजन कर्मम च यज्ञ पात्र पूजन कर्मम च मया करिष्ये इति
0: संकल्पः
1: यज जाग्रत उदूरम उदैति देवान्तर शुद्ध सिद्ध दैवै दुरंगवं ज्योतिषां ज्योतिरे गन्धमे मनः शिव संकल्पः यज जाग्रत उदूरम
2: उदैति देवान्तर शुद्ध सिद्ध दैवै
1: दुरंगवं ज्योतिषां ज्योतिरे गन्धमे मनः शिव संकल्पः जयने दम्भुदं भुवनं भविष्यत् परिग्रहीतम अमृतैन सर्वं जयने यज्ञ सायते शब्द होदा तन्नमे मनः
2: शिव
1: संकल्पः बोले गजानन जी महाराज की एक बार परंपरा का जयकार करो।
0: ओम शलपुर जी महादेव की
3: जय,
0: देवेश्वर महादेव की
3: जय,
0: सुदीप नारायण भगवान की
3: जय,
0: हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी श्री माधवानंदपुरी जी सद्गुरुदेव भगवान
3: की जय,
0: विश्वगुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेश्वरानंदपुरी जी गुरुदेव की
3: जय,
2: अनंत श्री महामंडलेश्वर स्वामी।

बोले स्वामी गुरुदेव महेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय। अब मातृका पूजन अटैच करा दो। आग्नेय मातृका पूजन समर्पया मे लोटा जल संकल्प सब लाते ले लीजिए। समूह पहले गणपति ध्यान करो। ओम गणानंदवा गणपति गम हवामहे प्रियानंदवा प्रियपति गम हवामहे निधिनंदवा निधिपति गम हवामहे वसो मम माम जानिक पदम ओम गम गणपतये नमः नमः गणपतये गणपतिं संपूजयन्न मातृगणं भाव गणप रेश पदर ददा तो ओम गौरीय नमः गौरी मावायम स्थापयम। एक एक फूल धराय दो दे दो पुष्प है ना ये ओम गौरी नमः गौरी मावायम स्थापयामि। ओम पद्माय नमः पद्मा मावायम स्थापयामि। सच्यै नमः सती मावायम स्थापयामि। ओम मेधायै नमः मेधां मावायम स्थापयामि पूजयामि। ओम सावित्र्यै नमः सावित्री मावायाम स्थापयामि पूजयामि। ओम विजयायै नमः विजयां मावायाम स्थापयामि पूजयामि। ओम जयायै नमः जयां मावायाम स्थापयामि। ओम देवसेनायै नमः देवसेनां मावायाम स्थापयामि पूजयामि च। ओम देवसे स्वधायै नमः स्वधां मावायाम स्थापयामि पूजयामि। ओम स्वाहायै नमः स्वाहां मावायाम स्थापयामि। ओम स्वाहायै नमो नमः मातृभ्यो नमः मातरं मावायामि स्थापयामि पूजयामि च। ओम लोकमातृभ्यो नमः लोकमातरं मावायामि स्थापयामि पूजयामि।

0: संद्रसे गौरी पद्मा सचिर मेधा सावित्री विजया जया देवसेना सुदासा मातरो लोकमात्र दृष्टि पुष्टि तथा पुष्टिरात्म कुलदेवता गणेशानादिकारार्धा पूज्य पूज्यो पूज्या षोडश ओम गम गणपतये नमः। गणपतिन बुलाए दो, एक जन्म जी अट विराजमान गणपति यू ब्रिंग देयर। ओम गम गणपतये नमः। ओम मनोजोद्धर्जकदामाजसमिमं दधातु विश्वे देवासयमादयन्ताम् ओम प्रतिष्ठा अनया प्रतिष्ठया सर्वे देवासु प्रतिष्ठता सर्वा मात्रा सुप्रतिष्ठा वरदाभीष्टदा संकल्प सिद्धिदा भवन्तो परिक्रम्य जलेन परिक्रमां विधाय। जल से परिक्रमा कर दो। ओम श्री धनदायक गौम शेषनौ जव हो सम वर्तत कल्याण ब्रह्म दिशा श्रोत्रा तथा लोका मगल भयन्न संपूजयामि पुष्प धूपे संपूजयन्न गणे गणसम संपूजयामि फलेन अर्घम समर्पयामि। हाथ में जल दे दो।
1: हो गया
0: संकल्पम होमे जपे विनियोग
1: समर्पयामि।
0: वस्त्राणि वस्त्राणि सभी
1: हाँ।

0: अनशस्मानाय सौदानाय स्वाहा नमो ग्रहेभ्यो नमो नमः प्रणते पूर्वकम्
1: सर्वतोभद्रमण्डले संक्षिप्तरूपेण सर्वतोभद्रमण्डलं पूजयामि पादयोर्पाद्यं समर्पयामि हस्तयोरर्घ्यं समर्पयामि मुखे याजमनीयं समर्पयामि जलेन आपूर्य ओं वरुणस्यौतम्ब नमसे वरुणस्कम्बसर्जनितौ वरुणसरितसदन्यसे वरुणसरितसदनमसे वरुणसरितसदनमासे ओं वरुणाय नमः सङ्गं सपरिवारं पूजयामि तर्पयामि च वरुणाय सङ्गाय सपरिवाय सुप्रतिष्ठितवर्धौ रुद्रकलशे यस्मिन् समाविशन्तौ ओं ओं विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे सर्वतो भद्ररूपे विष्णुमण्डलं पूजयामि तर्पयामि च नमस्करोमि च ते देवा शान्तिदा पुष्टिदा वरदा विष्टदा सङ्कल्पसिद्धिदा मे भवन्तु नित्यं विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णुदेवं संस्मरामि अग्नये नमः अग्निप्रज्वलितम् कपूर है अंदर ये रहा No, this one. अगर मान लो वहाँ अग्नि ना होने जयदेव इस कौन से अग्नि लेगा समय इस बेले कर दो और थोड़ी करा विक्रम भाई ओ विक्रम भाई विक्रम इनमाइन अग्नि पर थोड़ी थोड़ी अग्नि है चलो
2: चलो करनी हाँ
1: ओम मग्न आया हे गम गृणानो हे वेदा हे हे मैंने कोई ले लो ना अपन अपने अग्नि अग्नि अग्नि आप प्रज्वलित करा दो हाँ दीपक से ले ले जयदेव ओम मग्ने नयः सुभद्राय यस्मान् विश्वान् वयुनानि विद्वान् युद्धस्मजोरा

नमामावय सक्षयाय जिन्वता पूजनयता च नारितं च सदियां चाभिद्धात् तपसोद्यजायता ततौरत्यजायत समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवादति समुद्रो जायतौरात्रणविदतमिकतोऽसि सूर्या च नमसो धातायथा पूर्वमखल्वद्यं प्रदं चान्तरिक्षमतः स्वाहा ॐ अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां कृतिव्यास्वरितमुण्डलिकाक्षां सवती बाह्याभ्यन्तर शुचि आत्मतत्त्वं शोधयामि अभी यानी जल्दी प्रवेश करा दे मानो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतो दवदासो

पृथ्वी तत्पिता तद्ग्रावाण सौमसुतौ मयो भुवस्तदश्विना शृणुतं धिष्णया युवम तमीशानं जगत तस्तु कस्पदि जिन्वमवसि ॐ महि वयम् पूखा नो यदा वेद साम सद्वृधि ॐ स्वस्ति न इन्द्रौ रदशर्वाः स्वस्ति नस्तारक्षौ अरिष्टानि मे स्वस्ति नो बृहस्पतिर्मे ददातु पृच्छदसुवां मारुदा प्रश्नि माधर शुभं जावानो विदधि गुजग्मयः अग्निर्जिह्वा मनव शौरचक्षसौ विश्वेनो अवसा

0: जयदेव नारंगी जी आ गए हैं, इनको भी तिलक करके इनका भी बंद
1: कर दिया तिलक कर दिया
0: इनका बंद
2: बांधो।
1: दिस इज योर पॉकेट मनी, कीप फॉर यू।
0: ॐ यदा वदन्दाख्यायणा हिरण्यघं सदानी गाय सुमनसि मानादन्दा वदनामि शरदायुजं शरदगिरि यदा समं।

0: बाज के लगाया तिलक?
1: आओ लगा दिया,
0: इन्हें मोड़ी बांधी?
1: बांधी, सब रेडी
0: रेडी। नहीं नहीं, इनके इनके नारंगी
1: तिलक विलक हो गया था?
0: हाँ, नारंगी के। हाँ जल्दी करो, हम अभी करते हैं, बस अभी ये स्टार्ट है करके। एक बार ये सब लगा दो इनको, शुड बी लिट इनसाइड।
1: Two sannyasis want to come. There are still two places here and two places here. So two, you have four sannyasis.
0: Yes,
1: actually, there are six. हैं? तो भी एक बाकी रह जाएगा। Next, in next round, when they get up, then you can sit.
0: Om Bhusva.
1: You want to come, or instead of you, you want to put him?
2: So we are starting our yagya. Before some things we all should know.
1: One here.
2: Like you are having one ghee with you. Yeah, you can. Somebody can translate.
1: One here and two here.
2: You can translate.
3: Yes.
2: Yeah.
1: One here.
2: Like we are having. You can see the sticks. We will use to put the ghee inside of the yagya kund.
1: जेडी, ये जो नए सन्यासी बैठे तीन, इनका तिलक करो। अरे अभी जस्ट बैठे हैं।
4: There is no cow dung.
3: Yeah, there is.
5: You can tell them with your.
3: Znači, na svakom kundu jedna osoba će biti zadužena za nuđenje gija, a ostali će nuditi ovaj samagri, tako da, evo.
1: You, the Divyan, you both sit together, come.
3: Je li ima netko da nije razumio?
1: You both sit together. साकल्य ये पढ़ो, यहाँ ये सबको डिवाइड कर लो ना। हाँ वो विक्रम सांद्रा, दिस स्मॉल कप्स व्हिच यू सी देयर, दिस वंस इफ यू कैन फिल दिस फॉर द यज्ञ एंड गिव एवरीवन, गिव फॉर एवरीवन, सबके लिए है विक्रम, जिसके पास नहीं है सबको।
0: फॉर एवरीवन, हाउ मेनी सीट?
1: उन दोनों सन्यासी के पास नहीं है, उन दोनों के पास नहीं है।
0: सन्यासी को दे दो, ये साकल्य दे दो।
1: Sweet Narayan.
6: Who will only fight you?

अनंताय एक बार जल की प्रदक्षिणा ओम ते देवा ते दिक्पाला वरद अभिष्टदा संकल्प सिद्धिदा वरदा भवन्तु नित्यमेव ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुः सर्वभूतेभ्यः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुः सर्वभूतेभ्यः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम

0: जागते छंदसे स्वाहा ओम गायत्री छंदसे स्वाहा ओम त्रिष्टुभ छंदसे स्वाहा ओम जागत जगत छंदसे स्वाहा ओम गायत्री छंद गायत्री त्रिष्टुभ छंदेभ्यो स्वाहा ते छंदः सुअभिष्टदा संकल्प सिद्धिदा वरदा ते देवा शांतिदा पुष्टिदा वरदा भवन्तु नित्यमेव। एक बार जल की प्रदक्षिणा होने जयदेव राउंड ऑफ वाटर पानी की जलता नरसिंह जी मेक परिक्रमा वाटर थ्रू वाटर
1: विद द वाटर जस्ट टेक अ फ्लावर फ्रॉम द वाटर

0: ओम माँ राइट पहले मातृका ऐसे बैठ जा करा पहले आए थे गौरी पद्मासन चाहिए
1: ओम भवानी त्वं दासे मयि वितर दृष्टिं सकरुणोमिति स्तोतुं वाञ्छन् कथयति भवानी त्वमिति यः तदेवं त्वं तस्मै दिशति निजसायज्य पदवीं मुकुन्दा ब्रह्मेन्द्रस्फुटमकुटनीराजितपदाम् ओं गणानन्त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियानन्त्वा प्रियपतिगुं निधेनान्त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भदं त्वमजासि गर्भधं मा गं गणपतये स्वाहा ॐ गजस्य गणनाथत्वं सर्वविघ्नविनाशन लम्बोदरत्रिनयन आगच्छ गणनायक मध्यमे गणपतये स्वाहा ॐ आयंगो प्रश्निरक्रमे सदनमातरं पुरःपितरं च प्रयत्स्वः हिमाद्रितनयां देवीं वरदां भैरवप्रियां लम्बोदरस्य जननीं गौरीम् आवाहयाम्यं ॐ गौर्यै स्वाहा ओम सुवर्णाभ्यां पद्महस्तां विष्णु वक्षस्थले स्थितां त्रैलोक्यंबुजितां देवीं पद्माम् आवाहयाम्यं पद्मायै स्वाहा ओम उत्पलाक्षीं सुवदनां सचिकुण्डलधारिणीं देवराजप्रियां भद्रां सचिम् आवाहयाम्यं सच्यै स्वाहा ओम मेधायै स्वाहा ओम सावित्र्यै स्वाहा ओम विजयायै स्वाहा ओम जयायै स्वाहा ओम देवसेनायै स्वाहा ओम स्वधा

पुत्रमसी भद्रमसी दिवसै ओमेरा समस्माकं ब्राह्मणानां गं राजा चन्द्रमसे स्वाहा ओम सोमाय स्वाहा श्रीमान ओम सोम।

ओम भूमाय ओम मधुसाग्ने प्रतिजाग्रतोमिष्टापूर्ते संसृते सदामयम् अस्मिन्न सदसि यद्यत्वसरस्मिन्न विश्वे देवा यजमानसि ददास् बुधाय ओम बुधाय स्वाहा ओम बुधाय स्वाहा ओम बृहस्पति यदि अदर्यो आराध्यम विवादि कतम जनेषु यदि विशचरित प्रजा तस्मादस्मा द्रविणम देहि चद्राम्मा स्वाहा मन्नात् परिषदो रसं ब्रह्मणा व्यपद्वत क्षत्रं पायसोमं प्रजापतिरिदेन सदिमिन्द्रं विवानं सुक्रमन्दस इन्द्रसेन्द्रं मिदं पयोमृतं मधु शुक्राय स्वाहा ओं शुक्राय ओम सन्नो देवीरभिष्टय आपौ भवन्तु भीतये संयौरविश्रवन्दना शनैश्चराय ओम शनैश्चराय ओम शनैश्चराय।

ओम शुक्र ज्योतिष ज्योति चित्र ज्योतिष ज्योति सत्य ज्योतिष ज्योति ज्योतिष्मान शुक्रश्च दबरित पाशाद्यं स्वाहा। ओम आयंगौ प्रश्न मदा पितरं ब्रयंत स्वाहा। ओम ब्रह्म जिज्ञानं प्रथमं पुरुषावशी मद सूरुचौ वेन आवा सुपत्न्या उपमा यस्य वैष्टा सदस यो निवस।

जय पक्षा हिरण्य बाहु उपस्युतमा जातम ते अर्वना स्कंदाय स्वाहा ओम ओम इदम।

0: दे देवा शांति, हाथ में जल दे रखे उनको अर्पण।
1: अगेन नरसिंह जी राइट हैंड वाटर एंड परिक्रमा विद द वाटर एंड
0: ते देवा शांति दा पुष्टि दा वरदा वरदा अभिष्ट दा संकल्प सिद्धि दा भवंत नित्यमेव। हो गया ये। ओम सर्वतो भद्र स्थितेभ्यो सर्वेभ्यो देवेभ्यो देवताभ्यश्च स्वाहा। ओम पुरुष पुरुष निकाल दे।
1: ओम हरे हे ओम।

0: पुरगा पादुषी हावद्भुना
1: ततो विष्टम व्यक्राम चाज
0: नानसने अविश्वा
1: त्रिपादुर्द्व उदैत
0: पुरगा पादुषी हावद्भुना ततो
1: विष्टम व्यक्राम चाज नानस

0: हस्ते जलम
1: हस्ते जलम आदाय नरसिंह जी इन द राइट हैंड वाटर
0: सर्वतोभद्र मंडलाय
1: अद सर्वतोभद्र मंडल देवतानां कृते आहुतिं मया संप्रददे
0: इदं न मम अब सोला रुद्र महादेव फॉर महादेव के देख करके महादेव जी के मंदिर के
1: लिए फॉर शिवा भगवान शिवा
0: लॉर्ड महेश
1: फॉर महेश्वर महादेव वी आर गिविंग द द प्राण प्रतिष्ठा द भूमि पूजन नाउ फॉर दैट टाइम
0: और भूमि पूजन अच्छा हो और संकल्प सिद्ध हो यू बोल
1: कदम
0: तो क्या नहीं
1: एंड वी आर डूइंग थ्रू दैट अवर संकल्प थ्रू द मेकिंग ऑफ द शिवा टेम्पल द महेश्वर महादेव विच विल बी हियर वी आर सिटिंग हियर दिस इज द प्लेस वेर विल बी द बिग शिवा टेम्पल सो
0: या देर देर
1: देर इज सम या इट विल बी लॉन्ग टिल लाइक
0: बट ऑल विल बी लाइक टेम्पल
1: सो दिस इज द संकल्प प्रतिष्ठा संकल्प वी आर फिलिंग अवर संकल्प By heart, we will make this through the yajna.
0: Support.
1: Yeah.
0: Supported for supporting to yajna.
2: Neither. Yes. Nothing. Neither you will remember nor they will remember where the yajna was 6 months later. Here or there, same thing.

0: रुद्राय स्वाहा
1: ॐ अस्मिन् नमो तीर्णवीयन्तरिक्षे भव अधीतैषाघं सहस्रयोजने अवधन्वानि तन्मसे
0: माहेश्वर रुद्राय स्वाहा
1: ॐ अति नीलग्रीवाः श्रीकण्ठा रुद्रदुःश्रिताः तैषाघं सहस्रयोजने अवधन्वानि तन्मसे
0: माहेश्वर रुद्राय
1: स्वाहा ॐ नीलग्रीवाः श्रीकण्ठा सर्व अधक्षमाचराः
0: तैषाघं सहस्रयोजने
1: अवधन्वानि तन्मसे
0: Hey,

0: मेघांजं मे दद्मः स्वाहास्ते
1: परिक्रमा विद वाटर ते देवा शांतिदा तुष्टिदा संकल्प सिद्धिदा भव
0: माहेश्वर
1: महादेव
0: संकल्प
1: सिद्धिदा सुप्रतिष्ठितो वरदा भव
0: नित्यमेव हनुमान चालीसा करा दो
1: हमार
0: हैंग लगे लगे
1: करा दो नगलो चमे चमे करा दो
0: हनुमान चालीसा बोल
1: आप ही किताब मंदिर मंदिर पाँच सौ
0: चमे चमे सप्तमो अध्याय है ना चमे इज गुड वसुधारा
1: चले ओम नमो हिरण्यवाहवे सैनान्ये दिशाञ्च पतये नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्य पशूनां पतये नमः ओम रुद्राय स्वाहा चक्पिञ्जराय तुकिमते पतेनां पतये नमो नमो हरिकेशायोपवेतने पुष्टानां पतये रुद्राय
0: स्वाहा
1: नमो वृषाय व्याधेने अन्नानां पतये नमो नमो भवसेते जगदां पतये नमः रुद्राय
0: स्वाहा
1: नक्षत्राणां पतये
0: स्वाहाय
1: देवानां पतये नमः
0: स्वाहा
1: नमो रोहिताष्टवदे वृक्षाणां पतये नमो भवन्ते वारि वृषकदा यौखदीनां
0: पतये
1: नमो भवन्ते वाणिज्य कक्षाणां पतये
0: स्वाहा
1: नमो चर्गोघाय कर्णजदे पत्तीनां पतये
0: स्वाहा
1: नमो कृष्णाय दयाधावदे सत्त्वानां पतये नमो नमो सहमानाय निव्याधिने अव्याधिनीनां पतये नमो नमो निखङ्गिणे ककुभायस्ते नानां पतये नमो नमः निशेरवे परिचराय अरण्यानां पतये नमः रुद्राय स्वाहा नमो वञ्चते परिवञ्चते स्थायूनां पतये नमो नमः निखुङ्गुणे ककुतिमते तस्कराणां पतये नमो नमो नमो सकायिभ्यो जगासद्भ्योमुष्णतां पतये नमो नमो असिमद्भ्यो निक्तं चरद्विक्रन्दानां पतये नमः रुद्राय
0: स्वाहा ॐ नमो अग्निगिणे गिरिजराय कुलञ्जानां पतये नमो नमो इदमद्वेदन्वायिभिषवो नमो नमो आदन्वानेभ्य प्रतिददानेभिषवो नमो नमः
1: आयच्छद्भ्यो सद्भ्यश्चवो नमो नमः रुद्राय
0: स्वाहा ॐ नमो विचलद्भ्योदिभिषवो नमो नमः शब्दजो जगज्जागृतभिषवो नमो नमो शयानेभ्य शयिनेभ्य च नमो नमो तिष्ठद्भ्यो धावद्भिषवो नमः
1: रुद्राय स्वाहा
0: ॐ नमः सभापतिभिषवो नमो नमो
1: अशुपतिभ्यश्चवो नमो नमो अव्याधिनेभ्यो विविध्यन्तिभ्यश्चवो नमो नमो गुणाभ्यो त्रिगुणादिभ्यश्चवो नमो रुद्राय
0: स्वाहा ॐ नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्चवो नमो नमो कृतेभ्यो कृतपतिभ्यश्चवो
1: नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्चवो नमो रुद्राय
0: स्वाहा
1: नमस्तेनाभ्यसेनानिभ्यश्चवो नमो नमो वृतेभ्यो वृतेभ्यश्चवो नमो नमः क्षत्रभ्यो संकृतभ्यश्चवो नमो नमः महद्भ्योर्भकेभ्यश्चवो
0: नमो नमः रुद्राय स्वाहा ॐ नमः दक्षिणेभ्यो वृत्तकारेभ्यश्चवो नमो नमो कुलालेभ्य कर्मारे भ्यो नमो नमो निधादेभ्यो पुंजिष्ठेभ्यो नमो स्वाहनिभ्यो मृगेभ्यो नमो नमः
1: स्वाहा
0: सर्वाय पशुपते नमो नीलग्रीवाय श्रीखण्डाय च कपर्दिनेश स्वाहा ॐ कपर्दिनेशाय साक्षाय सत धनवने च नमो गिरिजाय चिवेष्टाय च नमो मिष्टमाय चुमते च नमो स्वाहा ज्ञाय नमो नादेय्याय च देव्याय च ॐ नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमो पर्याय च प्रजाय च नमो मध्यमाय च अपकल्पाय च नमो अग्न्याय च मध्याय च नमः सोभ्य
1: स्वाहा
0: कल्याय च नमः स्वाहा ॐ नमो वन्याय च कक्षाय च स नमः सर्वाय च प्रतिसर्वाय च नमः सुसेनाय च सुराय च असुराय चाभिधिन च नमो नमो बिल्मिने च स्वाहा
1: नमो बिल्मिने च कवचने च नमो वर्मिणे च वर्तने च नमः श्रुताय श्रुतसेनाय दुन्दुभ्याय हनन्याय च नमः स्वाहा
0: ॐ नमो बिल्मिने च कवचने च नमो वर्मिणे च वर्तने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमः दुन्दुभ्याय च हनन्याय च नमः स्वाहा
1: नमः च प्रमुषाय च नमो निखङ्गिणे च कुते तस्मात् तिष्ठेवे च नमो स्वाहाय सुदन्वने च
0: ॐ नमः सुजाय च पतियाय च नमो गाढ्याय च नेभ्याय च नमो कुल्याय च सरस्याय च नमो नादेय्याय च वैशन्ताय च नमो कुभ्याय स्वाहा
1: ॐ नमो कुप्याय च वट्याय च नमो विद्याय च चातुप्याय च नमो नमो मेघ्याय च विद्युत्याय च नमो वर्ष्याय च नमो रुद्राय स्वाहा
0: ओम नमो वाद्याय च रश्माय च नमो वाद्यवय वास्तुवाय च नमो वास्तुभाय च नमो सोमाय च रुद्राय च नमो ताम्राय च अरुणाय च नमो शंघवे
1: रुद्राय स्वाहा ओम नमः शंघवे च पशुपते च नमो उग्राय च भीमाय च नमो अग्रेवदाय दूरेवधाय च नमो अन्तरे च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो वर्गेभ्यो नमस्ताराय

शांति शांति शांति। देवपुरी महादेव की, दीप नारायण भगवान की जय, माधव कृष्ण भगवान की जय। हरिओम।

वनस्पतय मधुमान अस्तु सूर्य स्वाहा हरि ओम ऋजं वाजं प्रभदि मनोजजुः प्रभदि साम प्राणं प्रभदि चक्षुः श्रोत्रं प्रभदि।

ॐ मा भूयिष्ठामयो भुवस्थान ऊर्जे दधातन महीरणाय चक्षसे यौव शिवतमो रसस्तस्य भाजयते हन उशतीरिव मातर तस्मा अरङ्ग माम अवयक्षक्षयाय जिन्वत आपो जनयता च न स्वाहा ॐ धौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदय शान्तिः वनस्पतय शान्तिर्विश्वे

माम अवंतो अस्मिन् ब्रह्मणि अस्मिन् कर्मणि यस्यां पुरुधायाम् अस्यां प्रतिष्ठायाम् अस्यां आजित्याम् अस्यां आकृत्याम् अस्यां अस्यां देवहूत्यां स्वाहा। ते देवा शांतिदा पुष्टिदा हस्ते जलम आदाय। जयदेव हाथ में जल दो। ओम अग्निर्देव ब्रह्मा देवता अग्निर्देवता इड़ा भारती सरस्वती प्रसाद मह अग्निशुक्ताम अथर्वेदानुसार अग्निशुक्ताम जपे होमे विनियोग स्टार्ट। ओम ऊर्ध्वास्य समिदौ भवन्त्यूर्ध्वा शुक्रा शोचिष्यग्ने द्योमता सपतिगामस्मिनै दशासुरो भूरिपाणि स्वाहा। ओम देवे देवेषु देवो पते अनक्ते मद्वाघ्रतेन स्वाहा। ओम मद्वा

ॐ इडा सरस्वती भारती स्वाहा। ॐ इडा भारती सरस्वती स्वाहा। ॐ इडा भारती सरस्वती। ॐ तन्नस्तरपदी मधुपुरुष देवस्वायाश्वविश्वनाभिमस्य स्वाहा। ॐ वनस्पतये वसृजारराण तदम दिव्येभ्यो अग्निरव्यं समिदा स्वद्दयन्तु स्वाहा। ॐ अग्ने स्वाहा कृणु जात वेद स इन्द्राय यज्ञे विश्वै देवा हविरदं जुकन्ताम ते देवा शान्तिदा पुष्टिदा वरदा विष्टदा संकल्प सिद्धिदा भवन्तु नित्यमेव। हस्ते जलमादाय ॐ गं गणपतये नमः। गं गणपतये नमः। गं गणपतये नमः। नमः गं गणपतये नमः। नमः इयं वेदी परवन्त पृथिव्या अयं सोम वृष्णो वसुशरेद अयं यज्ञो विश्वस्य भुवनशनाभि ब्रह्माय वाच परमं व्योम्ना। ॐ पूजयामि यो कुण्डं पूजयामि। ॐ भूस्वाहा इदं अग्नये स्वाहा इदं अग्नये इदं न मम। ॐ भुवस्वाहा इदं वायवे इदं न मम। ॐ स्वसूर्याय इदं न मम। ॐ समिदौ अग्नि समिदानौ घृतपदौ ददाहुत अभिगुडा विषाडग्नि सपत्नान् हन्तु ये मम स्वाहा। ॐ अङ्गीरसानां मध्ये पञ्चानुवाकै स्वाहा। ॐ षष्ठाय स्वाहा। ॐ सप्तम अष्टमाभ्यां स्वाहा। ॐ नीलनखेभ्य स्वाहा। ॐ हरितेभ्य स्वाहा। ॐ क्षुद्रेभ्य स्वाहा। ॐ पर्यायकेभ्य स्वाहा। ॐ प्रथमेभ्य संखेभ्य स्वाहा। ॐ द्वितीयेभ्य संखेभ्य स्वाहा। ॐ तृतीयेभ्य संखेभ्य स्वाहा। ॐ उपोत्तमेभ्य स्वाहा। ॐ उत्तमेभ्य स्वाहा। ॐ उत्तरेभ्य स्वाहा। ॐ ऋषिभ्य स्वाहा। तो बोलो हम स्वाहा बोलो।

0: सहनौ भगेन जुष्टावरेषु समनेषु वल्गुरुषं पत्या सोगमसे त्वस्ये
1: स्वाहा।
0: ओम सौम जुष्टम ब्रह्म जुष्टम।

ओम त्रैष्टुभ छन्दसे ओम त्रैष्टुभ छन्दसे ओम त्रैष्टुभ छन्दसे ओम जागते छन्दसे ओम जागते छन्दसे इद तद विदुस्ते अमृतम मानमासु स्वाहा ओम गायत्रेण मिमीते अर्कमर्गेण सामत्रैष्टुभेन वाकं वाकेन वाकं द्विपदा चतुष्पदाक्षरेण मिमीते सप्तवाणी स्वाहा जगदा सिंधु दिवस्कभयात्रतन्तरी सूर्यं पर्यपश्यत गायत्रस्य समिदस्त्रिश आहूतदो महाप्ररिचे महिद्वा स्वाहा ओम यज्ञ यज्ञं गच्छ यज्ञपदिं गच्छ स्वायोनिं गच्छ स्वाहा एकदे यज्ञो यज्ञपदे स सुक्ता वाग सुवीर्य स्वाहा ओम बकड़तेभ्य बकड़ुतेभ्य देवा गातु गातु विदो गातु विद्वास्

0: ते हस्ते जल माता है
1: राइट हैंड वाटर ते देवा शांतिदा तुष्टिदा पुष्टिदा संकल्प सिद्धिदा भव नित्यमेव
0: ते परिक्रमा
1: एंड ड्रॉप वाटर
0: हाथ में जल बताओ
1: अगेन वाटर इन द राइट हैंड और विनियोग
0: यस मधु चंदा ऋषि इंद्रो देवता मरुदगण देवता छंद गायत्री अभिष्ट संकल्प से सिद्धिर्थे माहेश्वर महादेव से मंदिर निर्माणार्थे भूमि पूजनम यज्ञम सिद्धिर्थे होमम जप यज्ञम मया करिष्ये
1: ड्रॉप द वाटर अगेन यजाग्रतो अगेन

चर्षणीनां वसूनां मिरज्यत इन्द्र पञ्चक्षितीनां स्वाहा इन्द्र ओम इन्द्र वो विशद परिहवामहे जनेभ्य अस्माकम् अस्तु केवलः स्वाहा ओम इन्द्र सानसीरै सजिन्वा सदा सह

ओं चक्षुर्जज्ये न कल्पन्तां स्वाहा ॐ श्रोत्रं जज्ञेन कल्पन्तां स्वाहा वाग्यज्ञेन कल्पन्तां स्वाहा ॐ मनो

0: सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं पुष्टिवर्धनं सुगन्धिं यजामहे यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं मा सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं पुष्टिवर्धनं सुगन्धिं सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं मा पुष्टिवर्धनमिति पुष्टिवर्धनं मा उर्वारुक इव उर्वारुक उर्वारुक इव बन्धनात् बन्धनात् इव उर्वारुक उर्वारुकमिव बन्धनात् इव बन्धनात् बन्धनात् इव बन्धनात् मृत्योर्मृत्योर्बन्धनात् इव बन्धनात् मृत्योः बन्धनात् मृत्यो बन्धनात् मृत्योर्बन्धनात् बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीय मुक्षीय मृत्यो बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीय मृत्योर्मुक्षीय मुक्षीय मृत्यो मृत्योर्मुक्षीय मा मुक्षीय मृत्यो मृत्योर्मुक्षीय मा मुक्षीय मा मुक्षीय मा मृतात् अमृतात् मुक्षीय मा मुक्षीय मा अमृतात् अमृतादिति अमृतात् रुद्राय स्वाहा ते देवा शान्तिदा तुष्टिदा पुष्टिदा संकल्पसिद्धिदा भवतु नित्यमेव महादेव की जय हो अगेन पाटर इन द राइट हैंड नरसिंह जी
1: ओम गर्गरिषे देवता नक्षत्रादि सर्वे देवता त्रिष्टुभचंद भूरि त्रिष्टुभचंद नक्षत्र शान्तार्थे सर्वारिष्ट शान्तार्थे अथर्व वेदानुसारेण अथर्व शांत नक्षत्र शांति मया करिष्ये स्वाहा ओम चित्त

ओम कुबेराय स्वाहा, ओम ईशानाय स्वाहा, ओम ब्रह्मणे स्वाहा, ओम अनंताय ओम एवं ते देवा शांतिदा पुष्टिदा वरदा विष्टदा संकल्प सिद्धिदा भवन्तु नित्यमेव। Now we are going to Bhumi Pujanam. Bhumi Pujan Mantra. No? Om Satyam Bradhamukram Dikshatapu Brahma Yajya Pratavim Dharayante Sano Bhutasya Bhavyasa Patnyurudam Lokam Pratavim Nahakrunotu Swaha. ओम असंबादम मध्यदो मानवान यस उद्वत प्रवत समंबौ नाना वीर्या ओकदिर्या बिभ्रति पृथ्वी न प्रथमं राज्यदाम नः स्वाहा। ओम यस्या समुद्रम उद सिंधुरावो यस्या मन्नम कष्टवो संभवो यस्यामिदं जिन्वति प्राणजेदं सानो भूमि पूर्वपेदेय ददातु स्वाहा। ओम यस्या चतस्र प्रदिश पृथिव्या यस्या मन्नम कृष्टय संभभुव या बिभ्रति प्रदा प्राणजेज सा नो भूमिर्गोषु अन्ने ददातु स्वाहा। ओम यस्यां पूर्वे पूर्वजना विचक्रिरे यस्यां देवा असुरान व्यवर्तयन गावामस्वान्वयसवृष्टा भगं वर्चं पृथ्वी नो ददातु स्वाहा। ओम विश्वंबरा वसुधा निप्रतिष्ठा हिरण्यवक्षा जागतौ निवेशिनी विश्वानर बिभ्रति भूमिरग्निमिन्द्र वृषभा द्रविणो ददातु स्वाहा। ओम या रक्षन्तस्वना विश्वदानि देवा भूमिं पृथ्वीं अप्रदादं सानो मधुप्रियं दुहा मधो उक्षत वचसा स्वाहा। ओम यार्णैर्वा सलिलमग्रमासीद् मायाभिरन्वमसि मनीषा यस्यां हृदयम्।

परिचरा समानि अहोरात्रि प्रमादं करन्ति सानो भूमिर्भूरिदारा पयोदुहा मुक्षन्तु वर्षसा स्वाहा। याम अश्विनाम आविदाम विष्णुरेशयामि चक्रमे इन्द्रो न चक्रे आत्मने मित्रा सचिवदे सानो

भूमि प्रतौ पुत्रोऽहं पृथिव्या पर्जन्या पिता स ऊन प्रिपृतु स्वाहा। ॐ यस्यां वेदीं परिगृह्णन्ति भूम्यां यस्यां यज्ञ तन्वदे विश्वकर्माणा यस्यां मीयन्ते स्वरव पृथिव्या मूर्ध्वा शुक्र आहुत्या पुरस्तात् सा नो भूमिर्वर्धय वर्धमाना स्वाहा। यो न द्वेषत पृथिवी य प्रदन्यादो अभिसन्द

प्रचोदया हिरण्य चंद्र सीमानो दीक्षता कश्चन स्वाहा ओम अग्निर्भूम्या ओगदीन सुग्निमापो विवृद अग्नि रश्मसो अग्निरंतंबुर्जे गोसु अग्निश्चग्नयः स्वाहा ओम अग्निर्देव्या तपति देवेषु अन्तरिक्षम अन्त अग्निर्

यम गंधर्व अप्सरसा भैजंदी दानवासुर भीम कर्णो मा नौ दीक्षता कश्चन स्वाहा। ओम यस्ते गंधा पुष्करमा विवेश यम संभ्रम सूर्या वा विवहे अमृत्या पृथ्वी गंधमग्रे तेन सुर भीम कर्णो मा नौ दीक्षता कश्चन स्वाहा। ओम यस्ते गंध पुरुषु स्त्रीषु पंसु भगौ रुचेयौ अश्वेषु वीरसु मृगेषु हस्तिषु कन्यायां वर्चो यद भूमि तेनास्मम् अभिसंसृति नौ दीक्षद कश्चन स्वाहा। ओम शिला भूमिरस्मा पांशु व्यासा भूमि संदृता दया तस्य हिरण्यवक्षसे पृथिव्या अकरम नमः स्वाहा। ओम यसा वृक्षसा वानस्पतय ध्रुवास्तिष्ठन्ति विश्वा पृथिवी विशुदा यसं धृता मच्छा वदामसे स्वाहा। ओम उदीराणाम उदासीना तिष्ठन्त परमकर्मत पदभ्यां दक्षिणमसव्याभ्यां व्यतिष्ठमहि भूम्यां स्वाहा। ओम विग्मृग्वी पृथ्वी ममा वदामि क्षमां भूमिं ब्रह्मणा वा वर्धमाना ऊर्जं पुष्टिं विवृतिं मन्नभागम्।

यदरादयश पश्चादस्यो नास्ते मह्यं चरदे भवन्तु मान्निपतब्धं भुवनेश श्रियाण स्वाहा। ॐ मानपशपुरस्तादनुष्ठामोदरदस्वति भूमि न भव विदन्न परिपन्तिनो वर्यो यावयदावधं स्वाहा। ॐ तावते विपश्यामि भूमे सूर्यमे दिनादौ नैश

ॐ यत्ते भूमे विखनामे क्षिप्रं तदपुरोहतु मा ते मर्म विग्रमवे मा ते हृदयम् अर्पिपं स्वाहा। ॐ ग्रीष्मस्ते भूमे वर्गाणि शरद्मे हन् हेमन्तं शिशिरो वसन्ता ऋतवते सायन अहोरात्रि पृथिवीं नो दुहातमं स्वाहा। ॐ या सर्वं विजम विग्रमै यस्यामसग्नै अपसवन्ता स्मरा दस्युं ददति देवपेन दृढां पृथिवीं न व्रतं शुक्राय दद्रे वृषभाय वृष्णे स्वाहा। ॐ यस्यां सन्दो विदाने यभौ यस्यां निमीयते ब्रह्मणो यस्यामर्जितं साम्ना यजुर्विदम् युजन्ते यस्यमृतं सोमाम् इन्द्राय पाथवे। ॐ यस्या पूर्वे भूपूतकृतऋषयो उद्गा उदानिषु सप्त तत्रेण।

ओम यस्याम गायन्ति नृत्यन्ति भूम्यां मर्त्या विल्वा युध्यन्ते अस्माकं कृते यस्याम वदन्ति द्वन्द्वे सा नो भूमि प्रणुदता सपत्नान अवसदनं मा पृथ्वी कृणोतु स्वा ओम यस्यामन्नं ब्रीहियवो यस्या इमा पञ्चकृष्टय भूमि पर्जन्यापदये नमोस्तु दै वर्खमेदं स्वाहा ओम यस्या पूर्वकृतौ देवकृत यस्या विकृतये प्रजापतिः प्रजापतिविष्कर्ममासं रण्यां नः कृणोतु स्वाहा ओम निधिं विभर्ति बहुधा गुहा वसुमसीर्णिं।

पुत्र पिता पुत्रमेव प्रियं प्राणो हि सर्वस्यीश्वरो यच्च प्राणति यच्च न स्वाहा। ओम प्राणो मृत्यु प्राणस्तग्म प्राणं देवा उपासते प्राणो हि सत्यम आदिनमुत्तमे लोक आददत स्वाहा। ओम प्राणो विराट प्राणो दृष्टि प्राणसर्व उपासते प्राणो हस्त सूर्य चंद्रमा प्राण आहु प्रजा।

0: अपानो ब्रे अनवडान प्राण उच्यते यावे प्राण आहितो अपानो ब्रे उच्यते अपानिति प्राणति पुरुषे गर्भयंतरा यद त्वं प्राण जिन्वस जायते पुनः प्राणम माहु मातृ स्वान् वातोह प्राण उच्यते प्राणः भूतं भव्यं च प्राणी सर्वं प्रतिष्ठितं स्वाहा ओम अथर्वंगश्रम देवीर्मनुष्य जा उद ओगदे प्रजायन्ते यदावत्वं प्राण जीवसि स्वाहा ओम यदा प्राणो अभ्यवर्षित वर्षेण पृथ्वीं मयोगदय प्रजायन्ते यदयाः कश्च विरुधः स्वाहा ओम यस्ते प्राणिदं वेद यस्मिन्न प्रतिष्ठितं सर्वै तदैस्मै बलिमरान् अस्मु अनु अमुस्मिन् लोके उत्तमे स्वाहा ओम यदा प्राण बलिं स्तुभ्यं सर्वा प्रजा इमाः दैव तस्मै बलिम् अहरान् शृणुवतं सश्रवः ओम अंत गर्भश्चरति देवता सुबुधौ भूतस ऊजायते सा भूतो भव्यं भविष्यते पिता पुत्रं प्रविविशा सचिवे ओम एकं पादं नोत्खदति सलिलां द्वदम उच्चरन्न यदंगतम उद्खदी न स्वसन्य रात्रि नान्यस्यान्न व्युच्छेद कदाचन ओम अष्टाचक्रम वर्तत एक नेमी सहस्राक्षम परो नु पश्चाद अर्धेन विश्वम भुवनम जजान यदस्यार्धम कथम सकेतु यो अस्य विश्वमजनम एक विश्वस्य ज्येष्ठता नेशो क्षिप्रम दस्मै प्राण नमोस्तुते यो अस्य सर्वजन्मना एक सर्वस्य ज्येष्ठता अदन्द्रो ब्रह्मणा धीरो प्राणो मानो तिष्ठत स्वाहा ओम ऊर्ध्वम सुप्तेषु जागार ननु तिरिङ्गनो निभ्यतति न सुप्तम अस्य सुप्तेषु न सुश्राव कश्चन ओम प्राणमा प्रयतो न मदन्यो भविष्यति अवाम गर्भम इव जीवसि प्राणम बध्नाति त्वमयि ते देवा शांतिदा पुष्टिदा वरदा विष्टदा संकल्प सिद्धिदा भवन्तु नित्यमेव प्राण सुक्त
1: टेक द वाटर इन द राइट हैंड एंड थ्री टाइम परिक्रमा ऑफ द फायर एंड ड्रॉप द वाटर ऑफ द हे देवा शांतिदा तुष्टिदा पुष्टिदा संकल्प सिद्धिदा भवतु नित्यमेव
2: गणानंद करा
0: ते देवा शांतिदा पुष्टिदा वरदा पिष्टदा संकल्प सिद्धिदा भवन्तु नित्यमेव बोले देवेश्वर भगवान की बोले दीप नारायण जी महाप्रभु जी की आज के आनंद की
3: Mano, čia tik finalas, ar galite?

महे अहम जा निगर्भधम तम जा शिगर्भधम स्वाहा। इनको दो हाथ में ओम गायत्री तिष्ठ जगत्या नष्ट।

नमः ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमः रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकर्णाय नमः बलविकर्णाय नमः बराय नमः बलप्रमदनाय नमः सर्वभूतदमनाय नमो मनोन्मथाय नमः स्वाहा। ॐ अघोरेभ्यो अघोरेभ्यो घोरघोरत्तरेभ्यो सर्वेभ्यो सर्वसर्वेभ्यो नमोऽस्तु ते रुद्ररूपेभ्य। ॐ तत्पुरुषाय

ब्रह्मणो अधिपतिर्ब्रह्माधिपतिर् सदाशिवं स्वाहा ॐ माहेश्वराय स्वाहा यस् ॐ माहेश्वर महादेवाय स्वाहा ॐ माहेश्वर महादेवाय ते देवा शान्तिदा पुष्टिदा वरदा विष्टदा सङ्कल्पसिद्धिदा भवन्तु नित्यमेव प्रोक्षणम् हरिः ॐ सहस्रशीर्घा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद स भूमिगम्

राज्यं ग्रीष्म इदमः स्वाहा। ओम शब्दस्य सन्न परिधय स्त्री शब्द समिधा क्रदा दी अब

प्रभजन्त सेना परमिणो युधा जन्नस्माकं वेदविदारदानाम स्वाहा ओं बल विज्ञास्तवीर प्रवीर सन्वाज सन्मानुग्र अभिवीरो अभि सद्वासौ जाजैत्रमिन्द्रतमातिष्ठ गोविदा ओं गोत्रविदं गोविदं वज्रभाञ्जन् प्रमणं तमोजसायमग्गं सजातान्नवीरमदन्द्रघं सकायोन सग्गं रवदं स्वाहा ओं अभिगोत्राणि सहसा गामानोदयवीरसतमिन्द्रेन्द्रादुश्चमर्पतनाकालयुद्धयस्माकं सेना

संपदं दिगमारा विशिकाय वदन्ना इंद्रो बृहस्पतिरदिति शर्म यच्छतु विश्वास शर्म यच्छतु स्वाहा। ओम मर्माणि ते वर्मणा छादयामि सोमस्तु राजा मृतैनानुवस्तामुरुर्वर्यो वरुणस्ते कर्णोदजयं तन्वानु देवा मदन्तु स्वाहा। ओम माहेश्वर महादेवाय ओम माहेश्वर महादेवाय ओम।

पशुभ्यः ओम शांति शांति शांति सुख शांतिर भवन्तु सर्वत्र एव जयदेव। एक आवृत्ति तिलक करो पाछो। ओम आदित्य वसव रुद्र इंद्रेण स प्रजापति तिलकं ते प्रयच्छन्तो सर्वकार्यार्थ सिद्धये। इंद्र ओम आदित्य वसव रुद्र विश्वे देवा सपैत्रिका तिलकं ते प्रयच्छन्तो सर्वकार्यार्थ सिद्धये सर्वकार्यार्थ सिद्धये। थोड़ा चावल लेना मत, पानी छटक दे।

0: दाय मरी सब दसने ही मारी जात राम रे
1: शब्द सने मारी जात रान हरी हेली।

0: Ele, Sridip Narayan Bhagwan ki jai, Sri Alok Puri ji, Siddhapit Parampara ki jai ho. Vishwa Guru Mamandaleshwar Sri Paramswami ji Meshwar Ananji Guru Deva ki jai, Mamandaleshwar Swami Avatar Puri ji Maharaj ki jai.
1: Aaj ke ananda ki jai. आज के आनंद मीन्स द ब्लिस ऑफ टुडेज यज्ञ द ब्लिस हैप्पीनेस द हैप्पीनेस वी आर ऑलवेज से जय हो टू द हैप्पीनेस बिकॉज हैप्पीनेस इज समथिंग यू नो हैप्पीनेस हैप्पीनेस ऑफ टू यज्ञ हैप्पीनेस ऑफ द स्पिरिचुअलिटी हरिओम सा यू कैन ओके थैंक्स
2: थैंक यू
1: थैंक्स So we will start our next yagya on 3 o'clock.

मरसी। और तुलसी क्या करसी, तुलसी दैट तुलसीदास जी, तुलसी तुलसी क्या करे तुलसी बन का घास, कृपा भई गुरुदेव की तो बन गया तुलसी दास। तुलसीदास इज एवरीबॉडी रिस्पेक्टिंग एंड व्हाट कॉल वर्शिपिंग टू तुलसीदास जी, ओ तुलसीदास जी आर सो ग्रेट सो ग्रेट। सो ही रिप्लाइड, आई एम द ग्रास ऑफ द आवर फील्ड और गार्डन, नो यू नो तुलसी वन तुलसी प्लांट, तुलसी दैट आई एम सिमिलर लाइक दिस ग्रास, बट ब्लेसिंग ऑफ द गुरुदेव, ब्लेसिंग ऑफ द रामा, ब्लेसिंग ऑफ द हनुमान, दे गिव अस मी ब्लेसिंग दैट बन गया तुलसी दास। दास मीन्स स्लेवर ऑफ द गॉड। महाप्रभु जी वन होली गुरु जी भजन, दासन का दास प्रभु मये बनावो, हे प्रभु लीव मी योर स्लेवर स्लेवर, गिव मी ब्लेसिंग गिव मी ब्लेसिंग गिव मी ब्लेसिंग। सो फॉर दैट दैट ह्यूमन लाइफ इज नॉट नॉर्मल लाइफ, ह्यूमन लाइफ इज नॉट लाइक ओनली eat and drink and live and sleep and live in this world and out enjoying, this is not sufficient. So for that human life, the yogis, the gurus, they give us, the gods give us the divine scriptures and divine god names, and gurus always guiding to devotees to divine path that you came in this world. So get self realization or inner peace, harmony, peace, tolerance and understanding between the family, between the culture, between the religions and between the nation. This is slogan of Vishwa Guruji. So that we are very happy and we are very very thankful to always our parampara rishis that they gave us that huge god glory name. In the India, one great goddess, always I was thinking, you know, not only in India but mostly all everywhere around the world, only mothers, they are more devotees to god than men. Why this is happening? Every satsang you go, there majority of the mother or sisters, and what called brother or the fathers, or they are less quantity, because the mothers and sisters, they are more the toward thinking to god. And in similarly in India, that by Meera, the divine bhakti she had, and she was especially in Rajasthan, she born in Rajasthan, and she was great devotee of god. And she write one bhajan, a divine bhajan, you know that she how deeply she was this wrote the bhajan, and how deep was she was feeling that bhajan toward god. So great, पाया जी मैंने राम रतन धन पाया, जगत में लागे सब फीका, मेरे सदगुरु दी अमोलक वस्तु कर कृपा अपनाया, जन्म जन्म की पूंजी पाई, मितिया जगत में सब खोवाया। ओ गुरुदेव, सी वॉज प्लानिंग दिस भजन, पाया जी मैंने राम रतन द गॉड ग्लोरी लिंक माइंड ज्वेलरी, गॉड नेम इज लाइक ज्वेलरी, पाया जी मैंने राम रतन धन पाया, मेरे सदगुरु दी अमोलक वस्तु कर कृपा अपनाया, माई गुरुदेव गेव, दैट इज द यू कैन नॉट कंपेयर इन द प्राइज, आउट ऑफ प्राइज, हायर देर नो प्राइज, इट प्राइजलेस. One thing is there no price, that may be no materials, but you cannot give price, million, trillion or billions the money. If you give, you cannot get. So Meera Bai said that I got that name, you cannot buy that glory.

ओम अधस्ताद अनंताय स्वाहा हे ते देवा शांतिदा पुष्टिदा वरदा विष्टदा संकृत सिद्धि दिक्पाला सावधाना तत्परा संयतेन्द्रिया अग्नि

रेडी स्टार्ट। यान हाथ में जल रहा संकल्प। ओम एव ग्रह गुण विशेषण विद्या विशिष्टायाम अद्य शुभ पुण्य तिथौ रुद्राभिषेक कर्मणे महादेवस्य माहेश्वर महादेवस्य भूमि पूजनार्थे होमम जपम यज्ञम मया करिष्ये।

ओम असौ यस्तामरुणतपुरौ समङ्गलायै जैन गुमरुद्राविदौ दिक्षुसिताः सो वैशा गुम्भैडैमयि स्वाहा। ओम असौ यो वसर्वदिन्नीलग्रीवो विलोहिता उदयनङ्गोपादृसन्नतसन्नुधार्य सदृष्टो मृळयादिनः स्वाहा। ओं परिदे धन्वन वैदिस्मान्नवणुक्तविशदातौयेकदशवारैस्मन्निदेतम्मास्वाहा। ओं भवदते

ॐ रोहितायस्तपदये वृक्षाणां पदये नमः स्वाहा। ॐ भुवन्तैवादिवोकृतीनां पदये नमः स्वाहा। ॐ नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणां पदये नमः स्वाहा। कन्दकदेवतीनां पदये नमः स्वाहा। ॐ नमः कृष्णाय दयाधावदे सद्वानां पदये नमः। ॐ सामानाय निव्याधिनीयाव्याधिनीनां पदये नमः स्वाहा। ॐ निखङ्गिणीककुवायस्तेनानां पदये नमो स्वाहा। ॐ निचैरविपरिचरारण्यानां पदये नमः स्वाहा। ॐ नमो वञ्चते परिवञ्चते स्थायुन्नां पदये नमः स्वाहा। ॐ नमो निखङ्गिणैकुतिमते तस्कराणां पदये नमः स्वाहा। ॐ श्रीकायिभ्योजिकांसद्भ्यो मुकुणतां पदये नमः स्वाहा। ॐ नमः श्रीमद्भ्यो नग्नं जरद्भ्यो विकृन्दानां पदये नमः स्वाहा। ॐ नमो उग्नि गिरिचराय कुलुञ्जानां पदये नमः स्वाहा। ॐ ईशुमद्भ्यो

ओम नमः स्वपद्भ्यो जागृतभ्यो सवो नमः स्वाहा। ओम नमः आसीनेभ्यो आसीनेभ्यो सवो नमः स्वाहा। ओम नमः तिष्ठभ्यो धावद्भ्यो सवो नमः स्वाहा। ओम नमः सभाभ्यो सभापतिभ्यो सवो नमः स्वाहा। ओम नमो अश्वेभ्यो अश्वपतिभ्यो सवो नमः स्वाहा। ओम नमः व्याधिनिभ्यो विविध्यन्तभ्यो सवो नमः स्वाहा। ओम नमो गुणाभ्यो स्त्रीगुणाधिभ्यो सवो नमः स्वाहा। ओम नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यो सवो नमः स्वाहा। ओम नमो व्राजेभ्यो व्राजपतिभ्यो सवो नमः स्वाहा। ओम नमो कृषेभ्यो कृषपति

रुद्राय च नमः स्वाहा। ओम सर्वाय च पशुपतये च स्वाहा। ओम नीलग्रीवाय च चंद्रकंठाय च स्वाहा। ओम नमः कपर्दिने जुतुकेशाय च स्वाहा। ओम सतसहस्राय सतधनवने च स्वाहा। ओम गिरिशयाय च शिविष्टाय च स्वाहा। ओम मेघदूतमाय च यशुमते च स्वाहा। ओम नमो रसवाय च

0: ॐ मध्यमाय च प्रगल्भाय च नमः स्वाहा ॐ जग्न्याय बुध्न्याय च नमः स्वाहा ॐ शोभ्याय च प्रतिसर्याय च स्वाहा ॐ याम्याय च क्षेम्याय च स्वाहा ॐ श्लोक्याय च वसन्याय च स्वाहा ॐ ऊर्व्याय च कल्याय च स्वाहा ॐ नमोवन्याय च कक्षाय च स्वाहा ॐ सर्वाय च पशुपतये च सर्वाय स्वाहा ॐ आशुसेनाय चासुरदाय स्वाहा ॐ शूराय चावभैरिने च स्वाहा ॐ नमो बिल्मिने च कवचिने च स्वाहा ॐ वर्मिणे च वरुधिने च स्वाहा स्वाहा ॐ दुन्दुभ्याय च अनन्याय च स्वाहा ॐ कृष्णवे च मृष्मजाय च स्वाहा ॐ निखङ्गिणे कैदुमदे तीक्ष्णैषे चायुधिने च स्वाहा ॐ स्वायायुधाय च सौधन्वने च स्वाहा
1: ॐ नमः शुद्धाय

0: ओम मेध्याय च विद्युत्याय च स्वाहा ओम वास्याय च वास्याय च स्वाहा ओम नमो वात्याय च वासनेस्माय च स्वाहा ओम सौमाय च रुद्राय च नमः स्वाहा ओम ताम्राय च अरुणाय च स्वाहा ओम संघवे च पशुपतये च स्वाहा
1: उग्राय च भीमाय च स्वाहा
0: ओम अग्रेवदाय च दुरेवदाय च स्वाहा ओम हन्त्रे च नियसे च स्वाहा ओम रक्षेभ्यो हरिकेशभ्यश्च नमस्ताराय स्वाहा ओम नमो शम

0: ओम नमो शंभवाय यजमयो भवाय यजस्वाहा ओम शंकराय यजमयस्कराय यजस्वाहा ओम शिवाय शिवधराय यजस्वाहा ओम वार्याय च वार्याय यजस्वाहा ओम प्रदरणाय चोद्धरणाय यजस्वाहा ओम तीर्थ्याय कुल्याय यजस्वाहा ओम सज्ज्याय फेन्याय यजस्वाहा ओम सिक्ताय च प्रवयाय यजस्वाहा ओम किगोमशिलाय क्षयनाय यजस्वाहा ओम कवर्दिनी च पुलसी च स्वाहा ओम हिरण्याय च प्रपत्याय च स्वाहा ओम वज्राय च गोष्ठाय च स्वाहा ओम दल्व्याय गय्याय च स्वाहा
1: हृदयाय च निरुप्याय च स्वाहा
0: ओम काट्याय च गवरिष्ठाय च स्वाहा ओम शुष्क्याय च रित्याय च स्वाहा।

नमः ॐ भूर्भुवस्व स्वाहा ॐ इन्द्राय स्वाहा ॐ अग्निकोणे अग्निदेवाय स्वाहा ॐ दक्षिणेयमाय स्वाहा ॐ नैऋतये नैऋत्यदेवाय स्वाहा ॐ पश्चिमे

0: ओम माहेश्वर महादेवाय
1: स्वाहा।
0: ओम वामदेवाय नमः। ज्येष्ठाय नमः। रुद्राय नमः। कालाय नमः। कलविकर्णाय नमः। बलविकर्णाय नमः। बलाय नमः। बलपरमतन्नाय नमः। सर्वभूतदमनाय नमः। मनोत्मथाय नमः।
1: स्वाहा।
0: ओम माहेश्वर महादेवाय
1: स्वाहा।
0: ओम अघोरेभ्य घोरेभ्य घोर घोरतरेभ्य सर्वेभ्यो सर्वशर्वेभ्यो।

स्वाहांभगम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धन उर्वारुकमेव वंदनात् प्रत्योर्मुक्षेयमामृतात् स्वाहा ओम त्रिष्टुभ छंदसे स्वाहा ओम त्रिष्टुभ छंदसे स्वाहा ओम त्रिष्टुभ

ॐ नमस्ते रुद्रमन्यव उदोद इखवे नमः बाहुभ्यां मुददे नमः स्वाहा। ॐ याते रुद्रशिवात्तनुरघोरापापकाशिनी दयानसनवात्सन्दमया गिरिशन्तामिचाकशीः स्वाहा। ॐ न त्वं विधातये मा जनानां युधुस्मागं मन्तरबभूव निहारेण प्रावृता जल्प्या च श्रुतव उक्तश्चरन्तु स्वाहा। ॐ विश्वकर्मा जनिष्ठदेवम् आदिगन्धर्व अभवद्दीयतदीयपदे अजनिषौषधीनामभङ्गर्भं व्यदधात् पुरत्रा। ॐ मेष्टमा शिवतमो शिवो न सुमना भव परमे वृक्ष आयुधं निदं कृतिं विसाय विना आचर विना कृतवी स्वाहा। ॐ विकिरद्रविलोहित नमस्ते यसु भगव शास्ते शास्त्रगुम्हेद्योन्यवमस्मिन्निव बन्धुदा। ॐ सहस्राणि सहस्रसौ बहवस्तव हेतयो तासामीशानो भगवः पराचीनामुखकृते स्वाहा। ॐ असङ्ख्या

पुरवारुकमेव एतदै रुद्रावसन्तै नु परौमुजौ दौतिः अवदनन्वा पिनाकावसकृतिवास अहिगंसन्न शिवौतेः ॐ द्रायुगं जमदग्ने कश्यपचित्रायुगं मजद्दैवेशुद्रायुगं तन्नो वसुद्रा।

0: स्वकर्षमे यज्ञेन कलबन्धाम स्वाहा ओम अग्निश्चमे घर्मचमे यर्गचमेषु ओम मृदम चमे ऋतव चमे तपसमे संवत्सर चमे होराष्टे उर्वष्टे भद्रतंचरे चरे यज्ञेन कलबन्धाम ओम एका चमे तिस्र चमे तिस्र चमे पंच चमे पंच चमे सप्त चमे सप्त चमे नव चमे नव चम एकादश
1: चमे एकादश चम
0: त्रयोदश चमे त्रयोदश चमे पञ्चदश चमे पञ्चदश चमे सप्तदश चमे सप्तदश चमे नवदश चमे नवदश चमे एकविंशति चमे एकविंशति चमे चतुर्विंशति
1: चमे त्रयोविंशति चमे
0: पञ्चविंशति चमे पञ्चविंशति चमे सप्तविंशति चमे सप्तविंशति चमे नवविंशति चमे नवविंशति चमे एकत्रिंशति चमे एकत्रिंशति चमे त्रयस्त्रिंशति
1: चमे यज्ञेन
0: कल्पन्तां स्वाहा चतुर्दश चमे अष्टौ चमे अष्टौ चमे द्वादश चमे द्वादश चमे षोडश चमे षोडश चमे विंशति चमे विंशति चमे
1: चतुर्विंशति चमे चतुर्विंशति
0: ओम त्रय विचमे तृतीयवाट चमे तृतीयो हि चमे पञ्चावि चमे त्रिवस चमे त्रिवस चमे दुर्विवाट चमे तुर्यो हि चमे यज्ञेन
1: स्वाहा
0: ओम पष्टवाच पष्टो हि चमे उषा चमे वसा चमे ऋतव

ओम इंद्रो विश्वसिराजते शन्नो वसुधिपते शं चतुष्पदे शन्नो स्वाहा ओम शन्नो मित्र संवरुण शन्नो भवत्यर्यमा शन्नो इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमा स्वाहा ओम शन्नो भवदाम शन्नस्तपद सूर्य शन्नक्कनक्रदेव प्रदन्यो अभिवर्गदो स्वाहा ओम अहानिशं भवन्तु न संरात्रि प्रतिदीयताम शन्न इंद्राग्नि भवदाम भवभि शन्न इंद्रा वरुणाराधव्या ओम इंद्रापुगणावाजसोदोषमिंद्रासुविदायशम्योहुस्वा ओम सन्नो देवी रविष्ट आपो भवन्तो भीदैशम्योरविश्रवंतनास्वा ओम स्योनाप्रतवी भवानिक्षरो निवेशनी सन्मदसर्मसप्रदास्वा ओम आपो इष्टामयो भवसान उलेददातना मैरनाय चक्षसेस्वा योवसिवदमोरससजिवाजयदेनाउषदेरिवमातरस्वा ओम तस्मा अरंगमामव अविस्क्या जिन्वदा आपो

शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि स्वाहा ओम द्रते दग्गुं हमा मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ता मा मित्रस्य अहं चक्षुषा समीक्षामहे स्वाहा ओम द्रते दग्गुं हमा ज्योक्ते संद्रस्यव्यासम ज्योक्ते संद्रस्यव्यासम स्वाहा ओम नमस्ते हरसे शौचिसे नमस्तु हसी अर्चिसे यन्यासे अस्मद्दबन्धो हि तव पावको अस्मभ्यं शिवो भव स्वाहा ओम नमस्ते यस्तु विद्युते नमस्ते स्नैत्नवे नमस्ते भगवनस्तु यदस्वा समीयसे ओम जदौ जदा समीयसे ततौ नो भयङ्करु शन्नक्रो प्रजाभ्यो वयं न पशुभ्यः ओम सोमित्रालाभगतवद सन्तु दुर्मित्रियास्तस्मै सन्तु यस्मान् दैष्टियं च वयं दिष्मः ओम तच्चक्षुदेवैदम्बुरुदा शुक्रमुचरद पशेम शरद शतं जीवेम शरद शतं शृणुयाम शरद शतं ब्रब्रवाम शरद सदं भूयस शरद सदं

0: इष्टमेव।
1: ते देवा शांतिदा तुष्टिदा पुष्टिदा संकल्प सिद्धिदा भवतु नित्यमेव। बोले महेश्वर महादेव की
2: जय।
3: सो द फोर्थ आवर द आई थिंक फिफ्थ आवृत्ति ऑफ द यज्ञ हैज बीन कंप्लीटेड एंड एज वी नो वी विल व्हेन वी आर स्टैंडिंग फ्रॉम द यज्ञशाला सम देवता इज स्पेसिफाइड टू हैव द गुड डीड्स वी आर कॉलिंग द पुण्याज सो व्हाट वी हैव टू डू विद द राइट लेग थ्री टाइम्स आवर लेग वी शुड डू लाइक दिस यू नो ऑल 1 2 3 एंड यस वी कैन डू टुगेदर 1 2 3 या विद द राइट लेग
4: Znači, trebate napraviti pranam tri puta petom desne noge o zemlju.
3: Yeah. Then we are making pranamas to our own asan. We will say three times Om Shakraya Namaha.
5: Om Shakraya Namaha.
3: Om Shakraya Namaha.
4: Nakon što napravite tri puta nogom, trebate tri puta rukom asan na kojem sjedite dotaknuti i srce. Asan, srce, Om Shakraya Namaha, Om Shakraya Namaha.
3: Your all punyas, good deeds are under your

शिवाय प्रभु माधवेश्वर शिव माधवेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर नमः शिवम।

राज्य बदलते श्रम निष्ठा कल्याणी है, त्याग और तप की गाथाएं गाती कवि की वाणी है। ज्ञान जहां का गंगा जल सा

0: सदाशिवसमारम्भं शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मन्नाथ श्रीजगन्नाथ मद्गुरु श्रीजगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरुवे नमः। Salutations to the Cosmic Self.
1: Поздравляю космическое государство.

0: ओम शलक पुरुष महादेव की जय। देवाधिदेव देवेश्वर महादेव की जय। श्रीदीप नारायण भगवान की जय। हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी श्री माधवानंद पुरी जी सद्गुरुदेव भगवान की जय। विश्वगुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेश्वरानंद पुरी जी गुरुदेव की जय। आज के आनंद की जय। सब संत शुभनि महात्माओं की जय। माता पिता गुरुदेव की जय। सत्सनातन धर्म की जय। आप सब भक्तों की जय। हर नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो।
1: महामंडलेश्वर स्वामी अवतारपुरी जी महाराज की जय।

0: When the clouds dispersed, water covered the thirsty land. This was the first verification of the rain harvesting project. The water flowed straight to the lake. The blood of life has been harvested. This is now a reservoir of life, not only for the ashram, but also for many villages in this thirsty region. Now was the right moment to reforest the hill with soils dug out from the lake. The hill will hold a tree. A tree will hold the hill. This is the symbiosis of sustainable development. As much as the rain was a blessing for the desert, it was also a symbol of blessing for the thirsty human soul, a blessing from an encounter with the king of spirituality, Holy Guruji. Sri Madhavanandaji, Swamiji's Guru, is both the rain cloud and the sun, an eternally fresh breeze of saintly presence.
1: इसलिए सत्संग करना चाहिए और संतों के दर्शन करके गुरुदेव का स्मरण करना चाहिए। गुरुदेव का स्मरण सर्व पापों को धोके अंतकरण की शुद्धि होती है। अंतकरण शुद्ध करने के लिए प्रभु प्रार्थना और प्रभु का स्मरण और गुरुदेव की कृपा। लास्ट में कहा है गुरु कृपा ही केवलम तो शिष्य के परम मंगलम। जिसके ऊपर केवल गुरुदेव की कृपा होती है तो शिष्य के लोक परलोक में परम आनंद और मंगल हो जाता है। इसीलिए सतत गुरुदेव का स्मरण करना चाहिए। ये भजन गाते हो ये वेदों का सार है। ये तुम्हारे हृदय में वेद का सार यानी ज्ञान प्रकट होता है। साक्षात परमात्मा महाप्रभु जी के मुखारविंद से जो वचन निकले हैं वो वेदों से भी अधिक है। वो भव सागर से सहज तार लेते हैं।
0: The following day, there was the festival of the dawn of consciousness, the light of consciousness festival. The day of Guru Purnima has dawned. Guru Purnima is the day of Gurudev's glory and the ancient verses of Guru Gita that are his hymn. All those who seek knowledge need a teacher, and one who seeks spiritual enlightenment finds a guru, a master, one who knows Atma and Paramatma, soul and God. India has kept the spiritual knowledge alive and attainable to all through direct interaction between guru and his disciple. This relationship always assumes the full commitment of the master and the surrender of a disciple.

0: a source of wisdom.
1: क्योंकि कहा है कि वंदो भारत वर्ष भूमि, ऋषि मुनि सब संत जन और करे भारत की आस। श्री पूज्य भगवान दीप नारायण दीना ब्रह्म उपदेश टू हेल्प अवर सेल्फ टू प्रोटेक्ट द एंड वी शुड एंड वी मस्ट protect or any country should be discriminated. We have to respect that.
0: Finally, the day of ceremonial bathing has come.